नाक से घुटनों तक है। नमाज में अगर घुटने लंगे हों तो मर्द की नमाज नहीं होती। और कंधों को ढांकने का भी हुक्म है। आपको याद होगा कि एहराम में जब कंधा एक खुला होता है तो क्या करना चाहिए? ढांकना चाहिए। मर्द को नमाज में कंधे नंगे रख के नमाज नहीं पढ़ सकती, नमाज का सतर है। इसी तरह औरत का नमाज में सतर क्या है कि उसके हाथ और चेहरे के सिवा बाकी जिस्म ढका हुआ हो। बाज़ उलमा के नजदीक पांव भी ढके होने चाहिए, लेकिन हनफी फिक्ह में पांव जो है उनको हाथों पर कयास करके खोलने की रुख्सत दी जाती है। बहरहाल ये इख्तिलाफ मौजूद है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये तो है, यानी पहली चीज है लिबास। लिबास आम रोजमर्रा जिंदगी में जीनत भी, और रीश पर और क्या करते हैं, गर्मी सर्दी से भी बचाते हैं, वरना एक्सपोज्ड हो स्किन तो जल जाती है, तकलीफ उठाती, जख्म लग जाते हैं, ऐब छुपाते हैं। शौहर और बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा गया तो वो भी एक दूसरे के ऐब ढांपने के लिए। तो लिबास की गरज जिस्म को ढांपना, जिस्म के ऐब ढांपना, गर्मी सर्दी से जिस्म को बचाना, अजियत से बचाना, और साथ जेब जीनत भी है। और लिबास ही को जीनत कहा गया, जैसे खुजू जीनत को मिंदा कुल्ले मस्जिद। इसीलिए आपको याद होगा कल मैंने जब जीनत की तशरीह की है तो मैंने उसमें जिस्म और उसके अलावा लिबास को भी जीनत करार दिया है। ये तशरीह मेरी जाती नहीं है, ये कुरान ही की आयात के हवाले से है। इसीलिए जब मुसलमान औरत हिजाब करती है जो कि आउटडोर ड्रेस है, तो उसमें इनडोर ड्रेस यानी जीनत वाले कपड़े छुपाना भी लाजिम है। क्योंकि बहुत से लोग ये हुज्जत करते हैं ना कि जब हमने कमीज शलवार पहन रखी हमारा जिस्म तो नंगा नहीं हो रहा, अब और किस हिजाब की बात करते हैं आप? तो हिजाब जो है उसका हुक्म सूरत अल-अहज़ाब में आता है। सूरत अन-नूर में बेसिकली सतर के अहकाम हैं कि एक औरत को अपने जिस्म को या अपनी जीनत को नामहरम मर्दों से किस तरह ढांकना चाहिए, ठीक। और जब घर से वो बाहर निकले तो उस वक्त उसका ड्रेस क्या होना चाहिए, इसका हुक्म सूरत अल-अहज़ाब में आता है, ठीक है। लिबास आम रोजमर्रा जिंदगी के लिए, सतर नमाज के लिए इबादत के वक्त, और हिजाब घर से बाहर के लिए, ये तीन स्टेप्स हैं। सवाल है मर्द और औरत अकेले ना मिलें, क्या इसमें ड्राइवर के साथ अकेले सफर करना और टैक्सी में बैठना भी आता है? इसमें आप देखिए कि अगर टैक्सी के शीशे ट्रांसपेरेंट हैं, नजर आ रहा है सड़क पे गुजरते हुए ट्रैफिक को सब, तो उसमें आप टैक्सी के बाहर हैं या अंदर हैं बात बराबर हो जाती। रात को अकेले सफर ना करें, और ऐसी टैक्सी में जिसके ऊपर कर्टन हो कि बाहर से कुछ नजर ना आए तो तखलिया हो जाए। तखलिया क्या होता है? मर्द और औरत का ऐसी जगह अकेले मिलना जहां कोई और देख ना सकता हो, ठीक है। टैक्सी में तो सब दुनिया देख रही होती, इसलिए वो हुक्म फर्क हो जाता है। दो तीन दिन पहले की बात है कि रात के वक्त मेरी एक दोस्त का फोन आया इस्लामाबाद से, वो बहुत परेशान थी तो उसने मुझे फोन किया। उनका भी खैरियत क्या वजह है? कहते कि अभी मैं हॉस्पिटल से निकल रही थी, ससुर उसके बीमार थे, कहते हॉस्पिटल से निकल रही थी कि मैंने देखा कि एक अकेली औरत टैक्सी में है और टैक्सी आकर रुकी है और रात के 8:30-9 बजे का टाइम है और पुलिस वाला साथ निकला है। तो मैं एकदम घबरा गई कि क्या है। उस वक्त आसपास कोई और औरत नहीं थी तो पुलिस वाले ने मुझसे कहा कि आइए हमारी मदद कीजिए इस खातून को अंदर ले जाने में और रखने में, स्ट्रेचर पर डालने में, क्योंकि कोई नर्स भी खातून ड्यूटी पर नहीं थी उस वक्त।

0: वसल। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: हजरत उमर का एक कॉल है, इज़ा उल्बिसा अलैकुम शैउम मिनल कुरआन फल्तमिसूहु फिश्शर, जब कुरान की कोई बात समझने में तुमको इल्तिबास यानी शुबा पड़ जाए, मिक्सअप हो जाए चीज, तो उसकी

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें, 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया।
0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
3: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
2: अलिफ

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: समाइन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि मलक सदीक साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून स्कैंडिनेविया के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, काफी अरसा से वो अलील थे। आज उन्होंने मेरे लिए एक पैगाम छोड़ा है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आइए मिलकर मलक साहब का पैगाम सुनते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम जनाब राज साहब। राज साहब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मैं इंशाल्लाह अब तंदुरुस्त हो गया हूँ अल्लाह के फजल करम से, और बहुत जल्द मुलाकात होगी और इंशाल्लाह दोबारा हम नए से रौनक लगाएंगे और अपने मुस्लिम लीग के काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर आपको ईद मुबारक कहता हूँ।
1: समाइन, मलक साहब ने कम्युनिटी फोरम के चेयरमैन राजा गफूर अफजल को अपना पैगाम सेहत याब होने के बाद पहली दफा मीडिया पर
0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। समय ये मिला जुला प्रोग्राम है। समाइन इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सदर मोहतरम रहमतुल्ला बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेग साहब, एक बार फिर हम आपको अदारा आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी राज साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़
1: है। बेग साहब, आप इतनी बड़ी जमात की, अपोजिशन की जमात के आप सदर हैं, लेकिन आपकी आवाज़ कमज़ोर हो जाती है जब आप माइक पे बोलते हैं।
2: यार मैं तो बहुत अच्छी तरह बोलता हूँ और अल्लाह के फजल करम से मेरी आवाज़ भी ठीक ठाक है, कोई कुछ प्रॉब्लम भी नहीं। पता नहीं ये कोई रेडियो या फोन के सिस्टम में कोई खराबी हो सकती है।
1: बेग साहब चलें, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, ये भी आज कोरोना वायरस का प्रोग्राम है, तो आप कोरोना वायरस के बारे में क्या कहेंगे सामाइन को?
2: इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो जरा बड़ी उम्र के लोग हैं उनको चाहिए कि अपने घरों तक महदूद रहे और अपने बच्चों के जरिए सारी चीजें मंगवाएं बाहर से और एहतियात करें, और डेली जो है ना वो आप नहाएं। सुबह जो है ना जरूर हर आदमी जो है डेनमार्क रहने वाला पाकिस्तानी उसको चाहिए साबुन से अच्छी तरह नहाए और अपने बाल वगैरह सारा बदन साफ करे, और दिन में 2-3 मरतबा खाने से पहले खाने के बाद आप अब साबुन से हाथ धोया करें अच्छी तरह, और ख्याल रखा करें आप कि आपके बच्चे जो है वो भी हाथ धो के खाना खाएं। और दूसरा, और जिसको ये तफीफ हो कि शक हो कि उनको ये सिम्टम है तो उनको चाहिए कि फौरन से पहले वो जो यहाँ के जो दिए हुए नंबर है उन पर फोन करें और टाइम ले, और टाइम लेके अपने आप को चेक करवाए।
1: बेग साहब अच्छी बात है। बेग साहब, एक तो आपके जो लीडर हैं या आपके स्कैंडिनेविया के चीफ ऑर्गेनाइजर मलिक सदीक साहब, आपको मुबारक हो। आज उनका मैसेज जो है हमने अदारा आपकी आवाज़ पर हमें भेजा था उन्होंने ईद के हवाले से, तो आज मैसेज जो उनकी वॉइस जो है हमने अपने सामान के साथ शेयर की है, आप क्या कहेंगे?
2: जी ये बहुत अच्छा कदम है, अल्लाह ताला उनको तो अच्छी सेहत अता फरमाया, हमें तो बहुत खुशी है। इंशाल्लाह चंद रोज के बाद हम मीटिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर जो है मलिक मोहम्मद सदीक साहब वो सदारत करेंगे इजलास की, और इंशाल्लाह ताला सारे लोग देखेंगे वो सेहतमंद होके दोबारा अपनी जमात के साथ खड़े हैं।
1: बेग साहब, 14 अगस्त बहुत करीब आ चुका है, 14 अगस्त के हवाले से आपका कोई प्रोग्राम है?
2: जी हमारा हर साल 14 अगस्त का प्रोग्राम होता है और इस साल भी है, और इंशाल्लाह ताला आपको इन्फॉर्म किया जाएगा।
1: चले इस वक्त मतलब 14 अगस्त का आपका प्रोग्राम है?
2: जी जी बिल्कुल, हर साल होता है भाई जान।
1: बेग साहब, इस वक्त कोई कम्युनिटी को कोई आप मैसेज देना चाहें?
2: कम्युनिटी के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो आपका रेडियो जो है उनको गाइड कर रहा है, इसमें और भी कोई लोग हैं जो कम्युनिटी में, आप चेयरमैन है कम्युनिटी के, आपसे बेहतर मैसेज कौन दे सकता है आवाम को।
1: चले बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
2: जी राज साहब वेलकम, जब भी चाहे मैं हाजिर हूँ आपकी जो जब भी चाहे।
1: बहुत शुक्रिया बेग साहब। समान ये थे रहमतुल्ला बेग साहब जो के पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर हैं।

0: आ रहा है, क्या ये बात दुरुस्त है?
1: हाँ जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि रेशो मतलब है जा रही है, नीचे जा रही है, जो बहुत अच्छी यानी एक कारामत है। शुरू शुरू में आपको पता है, क्योंकि इसकी वजह दो तीन और भी आई हैं, जो मैंने जो थोड़ा सा मीडिया को, स्वीडिश मीडिया को फॉलो किया, वो दो तीन बता रहे हैं। एक तो ये बता रहे हैं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा होना शुरू हो गई है, वो खुद मतलब पहले इतने लोगों को, और दूसरी बात है लोगों को नॉलेज इंफॉर्मेशन भी नहीं थी, तो ये लोगों को आना शुरू हो गई है और लोग इसको सीरियस लेना शुरू हो गया। पहले आपको पता है कोई नई चीज जब आती है लोगों को पता नहीं होता है, लोग थोड़े से मतलब उस चीज को इतना सीरियस नहीं लेते। तो ये जगह जगह आपको पता है कि जब सोशल हर जगह लिखा होता है, हर, और ये भी कानून बन गया कि कोई भी यानी शॉपिंग मॉल हो, कोई यानी पब्लिक एरिया हो, तो वहां पर हमेशा आपको बोर्ड लगना चाहिए कि आप डिस्टेंस करें और आप हाथ धोएं, आप जिधर भी आप जाएं तो कि भाई अब उन्होंने ना वहां पर सैनिटाइजर रखे हुए हैं, हाथ धोने के लिए रखे हुए हैं। और आजकल जो मैंने जो एक डिफरेंट भी स्वीडन में ये चीजें देखी है कि अभी यहाँ पर अगर आप पब्लिक टॉयलेट्स या पब्लिक जगह पर आप जाते हैं, तो वहां पर आजकल वो सेंसर लगे हुए हैं टूटी का, यानी हाथ आपको वो टूटी खोलने की जरूरत नहीं होती, हाथ आगे आप करते हैं तो वो पानी आ जाता है। तो डिफरेंट जगहों पे ये चीजें भी बहुत हो गई हैं। फिर इसके अलावा उन्होंने बसों के अंदर इस वक्त स्पेशली मालमो में, और भी ऐसे ही होगा लेकिन मुझे मालमो का पता है, क्योंकि अब बसों के अंदर भी अब जैसे आप पहले आप टिकट लेते थे तो वो ड्राइविंग ड्राइविंग आपका ड्राइवर आपका टिकट देखता था और फिर आपको आने की इजाजत होती, तो अब आप उस डोर से भी नहीं आ सकते अब, लेकिन अब उन्होंने पीछे लगा दिए तो आप यानी जो पीछे वाला वहां से आप जा सकते हैं उसके अंदर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर भी यानी दो तीन चीजें हैं कि एक चीज ये भी हो गया कि यहाँ की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो वो उस भी थोड़ा सा मसला हो गया कि यहाँ पर वो तकरीबन ओवर 200 जो यानी ड्राइवर हैं वो भी जॉब से जा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी ना अवॉइड करना शुरू कर दिया ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये थोड़ी सी मतलब है एक नुकसान हो रहा है, क्योंकि इतने लोग मतलब है पैसे जनरेट नहीं हो रहे, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान तो उस बंदे को होगा, आपको पता ही है जिसके पास गाड़ी नहीं है या थोड़ा दूर रहता है, उसने अपनी जॉब पे जाना है या अपना कोई चीजें खरीदने के लिए जाना है या कोई दोस्त के पास जाना है या कोई इस तरह, तो ये चीजें भी यानी थोड़ा सा मसला यहाँ शुरू हो गया। लेकिन अब भी थोड़ी सी यानी हम आपको पता, हम सोशल डेमोक्रेट से मेरा ताल्लुक है, हम हमेशा अगेंस्ट होते हैं कि आप किसी को मतलब है जॉब ना दे। तो एक एक और हमारी पार्टी की तरफ से एक ओपिनियन आई है ये वाली कि आपको पता है कि अभी अगस्त का महीना शुरू हो गया है, अभी 2 अगस्त है आज, तो ये हो गया कि अभी स्कूल शुरू हो जाएंगे, जस्ट कोई 11 को स्कूल शुरू होने हैं या किसी ने यानी इसके वैसे ऐसा स्कूल शुरू होने, तो ये भी मतलब बातचीत हो रही है कि आप स्कूल को मिसाल के तौर पे उनका जो स्कूल का जो स्टार्टिंग टाइम है ओपन जिस तरह जाना है तो दूसरे स्कूलों से यानी आप थोड़ा डिफरेंस कर लें, ताकि बच्चे मिसाल के तौर पे एक स्कूल अगर 8 बजे शुरू होता है तो ये तो सेकंड जो स्कूल है उसके बच्चे तो आप उसको 8:30 कर दें, यानी बच्चों को भी आप टाइमिंग के थ्रू, जिसकी छुट्टी मिसाल के तौर पे किसी की छुट्टी 3 बजे होनी है किसी की 4 बजे होनी है, तो अगले दिन जो दूसरा स्कूल है वो 9 बजे शुरू कर दे, यानी इस किस्म के, यानी ये भी एक एक एक किस्म से एक आइडिया दिया है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को किसके मतलब आप डिवाइड कर दें डिफरेंट टाइम से, ताकि आपकी जो स्टूडेंट्स भी आए वो एकदम बसें ना भरें। अब आपको पता स्कूल में स्टूडेंट्स मतलब है डिफरेंट स्कूल जो आपको पता है उनको उनके पास वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं क्योंकि ये थोड़ी चीप होती है, वो गाड़ी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये डिफरेंट यानी आइडियाज हैं यहाँ पर कि भाई किस तरह से हमें मतलब है क्या करना चाहिए कि भाई कि हम नहीं चाहते कि बस जो ड्राइवर हैं उनको भी मतलब है जॉब जॉबलेस ना हो और उनको भी रखा जाए लेकिन काम भी चलता जाए, तो अब इसके बारे में भी काम हो रहा है। जी
0: कामरान, आपने बड़ा अच्छा किया तफसील से बताया। तो कामरान, अब जो सियासी हालात, चूंकि आप सियासत से भी आपका तल्लक है, तो सियासी हालात जो है आपकी हुकूमत क्या कुछ कर रही है नई चीजें, या सियासी पार्टियां कोई तब्दीली लाना चाहती हैं, या आपकी पार्टी कोई तब्दीली लाना चाहती है?
1: जी, बहुत बहुत अच्छा आपका वो ये क्वेश्चन है। पहली बात जो आपको शुरू शुरू में जब आपको बताया कि जब यहाँ COVID-19 आया तो बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म स्वीडन को मिला, क्योंकि जो यहाँ की जो आपको पता है डिफरेंट जो अपोजिशंस की पार्टीज होती हैं, और उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया है कि जो वजीर आजम को चला जाना

0: चाहिए, क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन नहीं किया। फिर वो कंपेयर करते थे कि डेनमार्क ने लॉकडाउन कर दिया, आपके डेनमार्क ने मतलब है नॉर्वे ने कर दिया, फिनलैंड ने कर दिया, फ्रांस में कर दिया है, यूके में हो गया है, इटली में हो गया, स्पेन में, यू गो ऑन, अमेरिका तक में हो गया है, जर्मनी में, मतलब है ये आप अगर देखें फॉलो करें। लेकिन वो कहते हैं कि देखें यहाँ कम हुआ यहाँ पर, तो लेकिन जो स्वीडन ने एक स्टेटिस यानी जो जो कहा मतलब है कि आप देखें कि अगर हम वहां पर अगर बंद हुआ है मतलब है डिफरेंट जगहों पे, तो वहां पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है वहां पर, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी मतलब है इस चीज को हमने लॉकडाउन नहीं करना, क्योंकि हमारे पास इतने मतलब है हॉस्पिटल हैं, इतनी हमारे पास जगह है, इतनी बेड है हमारे पास, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारी आर्मी यानी डिफरेंट उन्होंने वो भी लगा दिए, खैमे भी यहाँ लगे हैं, टेंट्स भी लगे हैं, तो हम इस चीज को कवर कर सकते हैं। मतलब है ये हम मतलब है हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कि एक हॉस्पिटल में 50 बंदों के बेड है, क्रिटाइन उन्होंने बनाया हुआ है, कोविड-19 के 50 पेशेंट वो ले सकते हैं, लेकिन वो वहां पर 50 नहीं आ रहे, वहां पर 20 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। तो उनको अगर वो ये देखते कि मिसाल तौर पर 50 का बेड है, लेकिन उनके पास 100 आ रहे हैं, 200 आ गए, अगली दफा उनके पास 250 आ गए, फिर तो वो मतलब है उस चीज को लॉकडाउन करें, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी नहीं है, ओवरफ्लो हो गया, मतलब कोलैप्स हो गया है सिस्टम सारा, फिर तो समझ भी आती है। तो इस वजह से स्वीडन ने मतलब है इस चीजों को भी के किया है कि जो मेन जो, और फिर दूसरी बात ये भी है कि अगर मिसाल के तौर पे वो लॉकडाउन करते हैं, तो पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के साथ घर में रहेंगे, क्योंकि स्कूल भी लॉकडाउन उन्होंने किया, तो इस वजह से उन्होंने जो डे केयर है वो भी लॉकडाउन नहीं किया, तो जो डॉक्टर्स थे, जो नर्स थे, जो पैरामेडिकल के स्टाफ थे, जो मिसाल के तौर पे एम्बुलेंस चलाते हैं, जो टैक्सी वाले लोग थे, जो जो जो मिसाल के तौर पे जो टैक्स ऑफिस में काम करते हैं, जिनकी जिनकी मतलब है ये जो सिस्टम जो था, ये उन्होंने वो जॉब पे आ रहे थे बकायदा, सिस्टम मुल्क एक ना वो चल रहा था, मतलब हर चीज एक अपने सिस्टम में थी और बकायदा काम कर रही थी, तो उन्होंने इस चीज को भी देखा कि भाई ये भी मतलब है तरीके से हम करें। और फिर इन्होंने ये भी कहा कि जो कोविड-19 है ये बच्चों पे इतना ज्यादा, क्योंकि उस उनके जो इम्यून डिफेंस सिस्टम होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो स्टैटिस्टिक और इन्होंने अपने एनालाइज किए कि वो बच्चों पे इतना असरअंदाज नहीं हो रहा है कंपेयर टू जो हमारे सीनियर हैं। तो उन्होंने फिर वो उसकी वो बनाई कैटेगरी बनाई कि जो उन्होंने कह दिया कि जो आपके डे केयर हैं ये अपने आराम से स्कूल में जाएं, और जो आपके 9th तक हैं वो भी स्कूल में जाएं, लेकिन जो कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटीज हैं ये थोड़े से यानी डिफरेंस होता है, वो घर में बैठ के ऑनलाइन उनकी क्लासेस होंगी। और फिर उन्होंने कहा जो मिसाल के तौर पे जो थोड़े से सीनियर हैं 60+ हैं, जो 70 हैं, यानी वो घर में रहें, और उनको बकायदा यहाँ तक भी दे दिया है कि वो सैनिटाइजर वगैरह वो बिल्कुल वो ले सकते हैं, फ्री ले सकते हैं, ये भी मसला मतलब है आगे। तो ये उन्होंने बकायदा एक हर चीज का एक सिस्टम तरीके से लेके गए हैं, और रोजाना आकर आपको बताया कि मिनिस्टर हो गए, और थिग्नेल आपको बता आजकल बड़ा मशहूर है जो स्वीडन का और डॉक्टर है, जो वो आके मतलब है हर रोजाना आके मतलब है हमें वो करता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था और बताता था कि आज दिन में क्या हालात है, आज दिन में क्या हालात है। तो सबसे ज्यादा जो हालात जो है वो जो खराब है वो है स्टॉकहोल्म में। तो आज भी आपको मैं जरा मतलब आपको बताता जाऊं कि नॉर्वे में कि बंदे अगर मिसाल के तौर पे आप तो ये इसमें समर आ गया, तो नॉर्वे ने भी अभी तक स्वीडन को फुल मतलब है आप लोगों को नहीं, वो नॉर्वे ने भी स्वीडन वालों में कहा है कि सिर्फ स्कोने के लोग यानी जो माल्मो हो गया, लुंड, हेल्सिंबोरी, ये जो स्कोने के लोग हैं ये सिर्फ नॉर्वे जा सकते हैं, बाकी आपने इसी तरह स्वीडन डेनमार्क ने भी ऐसे ही किया कि स्टॉकहोल्म के लोग ना आए हमारी तरफ, नॉर्थ स्वीडन के लोग ना आए, यानी वो आए सिर्फ स्कोने के भी कुछ ले आ सकते हैं। फिर वो आ गया था कि एड्रेस कैसे पता लगेगा कि स्कोने में है या ये रहता है बंदा या ये स्टॉकहोल्म में रहता है या मालमो में रहता है, तो उन्होंने कहा कि टैक्स ऑफिस एक वो लेके हैं, कागज लेके हैं। लेकिन मुझे वैसे ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि अभी डेनमार्क ने भी खोल दिया, लेकिन अभी तक भी कंडीशंस हैं कुछ, ये भी मुझे है इंफॉर्मेशन जी।
1: तो कोई मालमो में कोई डेमोस्ट्रेशन भी हो रही है यहाँ जो है डेमोस्ट्रेशन कश्मीर के हवाले से, कोई मालमो में भी डेमोस्ट्रेशन हो रही है?
0: नहीं जी, हम इतने तो नहीं है, लेकिन ना मुझे बिल्कुल, हमें ये बात पता है कि 15 अगस्त को हमारे जनाब राजा साजिद साहब हैं, जो माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं और कश्मीरियों के लिए हमेशा उनके हक में बात करते हैं, और माशाल्लाह बड़े, मैंने उनको मतलब है वो हमेशा, और वो उनकी बहुत अच्छी एक चीज मैंने उनको देखा कि वो हमें भी साथ मिलाते हैं, मतलब है वो हमें मालमो वालों को स्पेशली जो पाकिस्तानी है उनको भी कहते हैं कि आप भी आए, और हम, और मैंने लास्ट टाइम भी देखा था कि इंडियन अम्बेसी के सामने 15 अगस्त को जब उनकी एक इंडिपेंडेंस डे होती है, और वो वहां पर जाके उनके सामने एक स्पीच करना, लोगों को जमा करना, एक इनिशिएटिव बनाना, और बकायदा वहां पर मतलब है एक प्रोटेस्ट करना, और ये, और वो आपको पता है मीडिया में आता है, वहाँ डेनिश मीडिया आपकी इसको वो कवर करती है, न्यूज आते हैं, पाकिस्तानी मीडिया आती है, और स्पेशली जो हमारे यूथ हैं यहाँ पर, जो डेनिश पाकिस्तानी है, स्वीडिश पाकिस्तानी है, जो बच्चे हैं उनको भी वो होता है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्या चल रहा है, ये चीज उनके वो यानी जबरदस्त, मैं उनको खराज तहसीन पेश करूंगा जनाब राजा साजिद साहब को, कि उनकी यानी बहुत बड़ी एफर्ट है ये वाली। और मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर का इशू अब ह्यूमैनिटी का इशू हो गया, ये अभी कोई उसमें ये नहीं हो, ये दुनिया की सबसे बड़ी जेल है। अगर आप कंपेयर करें ना इस इशू को फलस्तीन के इशू से, तो ये कश्मीर का इशू फलस्तीन इशू से बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बस आ जाता है कि फलस्तीन में मस्जिद अक्सा है, वहां रिलीजन का वो है हमारे लिए, बिल्कुल वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा इशू, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कश्मीर में आप देखें एक ज्यादा फलस्तीनी इतने नहीं है, तकरीबन 9 मिलियन लोग हैं जी, वो वहां पर उन्होंने डबल लॉकडाउन किया हुआ है, एक तो लॉकडाउन उन्होंने 5 अगस्त को किया था 2019 में, और दूसरा लॉकडाउन ये कोविड-19 की वजह से उनको वो मिल गया, और रोजाना हम टीवी पे देखते हैं कि कितने जो बेचारे हमारे नौजवान है, कभी कोई टीचर वहां से उठता है फ्रीडम फाइटर, कोई बेचारा कोई वहां पर कोई कोई यानी स्टूडेंट उठता है, कोई मतलब है ये यूथ उठ रही है वहां पर, और वो क्या करते हैं, वो बेचारों उनको शहीद भी कर देते हैं, और फिर उनकी लाश उन्हें वापस भी नहीं करते। मैं रिसेंटली जब एक बहुत बड़ी एक पिक्चर कश्मीर से आई थी, जब इस बेचारे के नाना को शहीद किया गया, और वो उस बच्चे को तो समझ नहीं है कि उसे गोली लगी, उसके पेट पे वो बेचारा बैठ जाता है, क्योंकि वो बच्चा अपने आप को महसूस यही करता है कि नाना के साथ मैं रहूं, और वो तस्वीर उतरती है, और फिर बाद में एक और हमने सोशल मीडिया पे देखी कि इंडिया वाले फौज उसके पेट पे पैर रखकर और वो बात कर, कितनी बड़ी एक इंसानियत है। मैं कहता हूँ यहाँ पर किसी आप जानवर को इस तरह मतलब है बाहर निकल के आप उसको इस तरह करें जगह पर, मैं कितने लोग खड़े हो जाएंगे, वो तो फिर भी इंसान है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो 15 अगस्त में इंशाल्लाह हम भी यहाँ से बहुत से मतलब है शुरू करेंगे और कर भी रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं 15 अगस्त को, और मेरी ये रिक्वेस्ट भी होगी इंशाल्लाह कि जितने भी पाकिस्तानी स्पेशली, और साथ अपने लोकल भी लाएं, यानी अगर डेनिश है वो भी साथ लाएं, और अगर स्वीडिश है या कोई भी हो यानी वो भी साथ लाएं और डेमोन्स्ट्रेशन करें। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है 15 अगस्त 9:30 बजे इंडियन एम्बेसी के सामने कोपनहेगन के अंदर, तो वहां पर बिल्कुल भरपूर तरीके से अपनी वो कराएं, और जो है राजा साजिद साहब उनका माशाल्लाह बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, और हमारे बिल्कुल मालमो पाकिस्तानी हम उनके बिल्कुल भरपूर उनके साथ हैं जी।
1: कमरान आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया, इंशाल्लाह आपसे राबता रहेगा
0: इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया राज साहब, बहुत शुक्रिया। सोना
1: समान ये थे कामरान कुरैशी, जो कि मालमो स्वीडन की फ़जाओं से बात कर रहे थे। ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, बड़े काबिल हैं, ये ऑनरेडी मजिस्ट्रेट भी हैं, जो कोर्ट में बैठते भी हैं बाकायदगी से जो है। इसके अलावा अपना पेशे के लिहाज से वो इंजीनियर हैं, गैस में काम करते हैं, बड़ा अच्छा है इनका सोशल वर्क भी, बड़ी हिम्मत है इनकी कि इतना टाइम ये निकालते हैं अपनी कम्यूनिटी के लिए, सोशल कामों के लिए। तो यही जज्बा होना चाहिए कि अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, जिस मुल्क में रहते हैं उसके लिए भी, और बाकी भी जो है अपने काम करने चाहिए। समय हमारे साथ साथ रही, अगले मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: सामने इस वक्त चौधरी शौकत साहब जो के काफ लीग के सदर हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। चौधरी साहब खुश आमदीद।
2: जी बहुत मेहरबानी रहन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक।
1: खैर मुबारक चौधरी साहब, पहले सबसे पहले तो आप अपनी तबीयत के बारे में बताएं।
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है कि मैं तो अब इंशाल्लाह जो है ना पूरी तरह सेहतयाब हो गया हूँ। आपको पता ही है, आपके साथ भी था 2-3 दिन पहले, तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने सेहत दी है दोस्तों की, बहन भाइयों की दुआओं से, तो अल्लाह पाक का बहुत करम है।
1: चौधरी साहब आप कोरोना वायरस के हवाले से कोई अपना, जिन लोगों ने इस तरह के इस प्रोसेस से गुजरे हैं, जिनका ऑपरेशन हुआ, उनको कोई मैसेज देना चाहें आप?
2: हाँ बिल्कुल, ये है कि सबसे पहले एहतियात सबसे बहुत जरूरी है। आप अपना फासला पब्लिक गैदरिंग में बहुत ज्यादा ना जाया करें, कम जाया करें, और जाए भी तो अपना मास्क वगैरह ये इस्तेमाल करें और जो अपना फासला रखें। हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस्लाम तो वैसे मुंह से भी हो जाता है, तो आपको पता है कि ज्यादा कोई पता नहीं होता कि इस भाई को कुछ ये कोई जो है ना क्या कहते हैं कि बीमारी लाग है या नहीं है या जो हो सकती है, तो आप अपनी एहतियात बहुत जरूरी है। जो खासकर बुजुर्ग लोग जो है जिनको ये शक है या कमजोर है या हो सकता है या हो सकती है, या जिनको जैसे मुझे मेरी तरह ऑपरेशन जिन्होंने करवाया है, तो एहतियात करें। सबसे बहुत जरूरी है कि एहतियात, अपनी सेहत को, सेहत का ख्याल रखें, फासला रखें और मिलना जुलना बहुत कम रखें।
1: ये बड़ी अच्छी बात की जो सब, चूंकि आप सियासतदान भी हैं तो एक आध बात सियासत पर भी कर लेते हैं। जो सब आप एक अपोजिशन जमात में पहले थे, उसके बाद आप हुकूमत में गए और अब फिर आप अपोजिशन की बातें कर रहे हैं, क्या बात है? ये हुकूमत तब्दील तो नहीं होने जा रही?
2: राय साहब जहाँ तक मेरी पार्टी का तल्लक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ हैं। जैसे कि हमारे लीडरान ने भी हमेशा कहा है कि हम इनका पूरा साथ देंगे, 5 साल पूरे करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो कि काम कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में होते हैं, तो वो उनकी निशानदेही करना फर्ज बनता है उस पार्टी का, जो उन पे फर्ज भी हो जाता है कि वो हुकूमत को बावर करवाएं कि ये मामला जो है ना गलत सिमत में जा रहे हैं, इसको इस तरीके से आप जो है ना लेके जाएं। तो ये कुछ लोग होते हैं, कुछ अनासर होते हैं जो कि इसका तजिया किसी और तरीके से करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी पार्टी उनके साथ है, गवर्नमेंट के साथ है इंशाल्लाह। अभी तक वो जो है ना हम उनके इत्तेहादी हैं और उनका ही साथ देंगे। तो खुद कैसी गलतियां होती हैं, ऐसी जो कोई पॉलिसियां होती हैं जिनको, जिनकी निशानदेही करनी बहुत जरूरी हो जाता है कि पार्टी के लिए भी, जैसे बेशक वो तादी हो जो भी हो, तो उनका बनता है कि जैसे मजहब के इस्लाम के लिहाज से काफी चीजें जो है ना चौधरी परवेज लाई साहब ने निशानदेही की, जो है ना वो उनको उजागर किया, तो ये फर्ज बनता है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनको कहें कि ये मामला जो है ना इस तरीके से जा रहे हैं, जो कि कम्युनिटी के मसाइल हैं, जो कि पाकिस्तानी अवाम के मसाइल हैं, हम उनके ऊपर हमें ज्यादा जोर देना चाहिए, हमें उनको हल करना है, पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देनी चाहिए। तो ये तो हमारा फर्ज बनता है और इंशाल्लाह हम उनके साथ ही हैं और साथ उनका देंगे।
1: लेकिन आप एक तरफ साथ भी हैं तो दूसरी तरफ आप पर जो आपकी हुकूमत चौधरी बरादरान पर जो नायब के जो 20-25 साल पुराने मुकदमात थे दोबारा खुलने जा रहे हैं, तो आप खाली सियासी बयान होता है कि हम हुकूमत के साथ हैं, वैसे आप साथ नहीं है हुकूमत के?
2: नैब के केस जो राज साहब आपको पता है, ये तो अभी तो नहीं है, ये तो पहले के है ना, तो पहले को कितनी दफा हमें क्लियर किया, हमारी पार्टी को नैब ने क्लियर किया, क्लियर चिट भी दे दी, साफ उनका कोई एलिगेशन भी नहीं लगाई है, कुछ भी नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर दोबारा ये हो गए। तो ये तो नैब को चाहिए कि अगर जब कुछ केस क्लियर हो जाते हैं तो उनको दोबारा फिर वो अंडर प्रेशर पार्टी को लाना, लोगों को लाना, तो ये तो कोई नामनासिब बात है ना। तो जो अगर नैब के केस है तो इंशाल्लाह हम उनकी फाइट करेंगे, पहले भी हम फाइट की थी, अब इंशाल्लाह हम अब भी फाइट करेंगे, हम अपने मसाइल जो है ना उनको हम जो हमारे केस है वो बिल्कुल इंशाल्लाह हम साफ है, क्लियर है हमारे केस, इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है। तो चौधरी बरादरान ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, दारों का एहतराम किया है, तो इसी तरह इंशाल्लाह हम आगे भी करेंगे।
1: लेकिन जो सब बंदा हुकूमत में होता है तो फिर हुकूमत में ही रहना चाहिए, या कितने पाकिस्तान में इतनी ज्यादा डेमोक्रेसी हो गया कि हुकूमत के रहते हुए अंदर भी तनकीद कर सकता है बंदा?
2: बिल्कुल राय साहब, ये तो हक इंसान का ना, पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तान की जो सियासी पार्टी है उनका ये हक बनता है, चाहे वो आतंकी हो, चाहे वो अपोजिशन हो, जो भी हो, तो जो भी कोई गलत समझती है पार्टी के ये गलत है तो उसकी निशानदेही करना पार्टी का फर्ज बन जाता है, जो कि वो अपने नजरिए के मुताबिक अपनी सोच के मुताबिक समझते हैं कि ये जो मामलात है ये हमारे नजरिए के मुताबिक गलत है, तो चाहे गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो तो उसके निशानदेही करना फर्ज बनता है। तो वो हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह परवेज रही साहब हमेशा अच्छे तरीके से, जो शुजा साहब अच्छे तरीके से वो जो है ना उजागर करते हैं उन मसलों को उन मसाइल को।
1: जो सब क्या ये बात मुस्लिम लीग नवाज की और मुस्लिम लीग काफ की ये एक ही अंदर जम होने जा रही है आपकी जमात, और ये मुआहदा हो चुका है कि वजीर आला जो पंजाब होंगे अगर केयर टेकर हुकूमत बनती है तो वजीर आला या तब्दीलियां हाउस तब्दीली होती है बुजदार साहब जाते हैं तो चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो वजीर आला पंजाब होंगे, आपको कोई अंदर की खबर दें आज?
2: राज साहब जहाँ तक अंदर की बात है वो तो मैं गायब का इलम तो नहीं जानता, लेकिन ये है कि आपको पता ही है कि इतना काबिल परवेज लाई साहब जो इतने काबिल इंसान है उन्होंने अपना वर्क पंजाब में करके दिखाया था अवाम को रिलीफ दी थी, पाकिस्तानी अवाम को जो उनके मसाइल असल मसाइल थे उनको उन्होंने उन पे काम किया था, तो उनका नाम आज तक परवेज लाई साहब का पंजाब में ये नाम आता है कि उनका रिकॉर्ड जो है ना हिस्ट्री में है। तो ये चौधरी परवेज लाई साहब को तो सब ही इत्माद करते हैं, तो लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अभी उनके साथ कुछ मेरे इलम के मुताबिक तो कोई ऐसा अभी को लाए जो है ना एग्रीमेंट नहीं हुआ ना एक मुआहदा हुआ है ना कोई ऐसी बात हुई है। तो अगर नून वाले चौधरी परवेज लाई साहब पे आप इत्माद करते हैं तो वो समझते हैं कि परवेज लाई साहब उनमें ऐसी काबिलियत है इसके काबिल है तो हम उनका शुक्रगुजार हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो समझते हैं। तो वक्त आने वाला वक्त तो वो उसी वक्त बात कर सकता है जब वो आएगा, फिर देखेंगे क्या होगा, अभी तो गवर्नमेंट के साथ हम तादी हैं।
1: तो सब एक हमारा यहाँ अकलौता मेंबर है पार्लियामेंट का मलिक सिकंदर सिद्दीक, और उसके बाद जो है जो हमें खबरें मिल रही हैं डेफिनेट आपके पास भी खबरें होंगी कि अगली दफा बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स आ रहे हैं तो अब कम्यून की तरफ लोग लगता है कि ज्यादा तोजो नहीं दे रहे, पार्लियामेंट के कैंडिडेट बनने की तरफ ज्यादा तोजो दे रहे हैं, आप क्या सियासी तजिया आपका क्या है?
2: राय साहब आपने कहा कि ये ज्यादा पार्लियामेंट की तरफ लोग ध्यान दे रहे हैं, असल में तो हमारे मसाइल पड़े हुए हैं कम्यून लेवल पे, हमारे बच्चों के हमारे जो मामलात है वो उधर से ही जो है ना हमने उनको हल करना है, जो के बच्चे हमारे आजकल जो के स्कूलों में जा रहे हैं बच्चे आगे आ रहे हैं तो उनमें ज्यादा हमें कमून की तरफ ध्यान देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बंदे हमें कमून में लाने चाहिए, हमारे काउंसलर हमारे जो भी ये लोग हैं इनमें ज्यादा से ज्यादा ये शऊर पैदा करना है हमने लोगों में कि ये कमून के इलेक्शनों में हिस्सा ले, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो पार्लियामेंट तो जाके कानून बनता है, जब कानून में मेजॉरिटी होगी तो उधर वो भी होगा, तो हमें पार्लियामेंट में भी हिस्सा लेना चाहिए, उसमें भी ज्यादा ज्यादा लोग जितने ज्यादा कानून में होंगे हमारे जितनी ज्यादा नुमाइंदगी पार्लियामेंट में भी होगी, ये पाकिस्तानी जो हमारे जो मसाइल है वो ज्यादा ज्यादा होंगे तो ज्यादा तरीके से मुतहद हो के जो है ना वो हमारे मसाइल हल करवाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा जो किरदार अदा करना चाहिए कानून में भी और पार्लियामेंट में भी, ऐसे ही जो ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले लोग हमें खुशी होगी।
1: चले आपने बड़ा दिलचस्प बात की और आपने बड़ा अच्छा बात की कि कम्यून में हमारे मसाइल पड़े हुए हैं और ये बड़ी अच्छी बात आपने की है, बड़ी अच्छी तरफ आपने तो जो मबजूल कराई है। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया
2: जी, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया राय साहब,
1: इंशाल्लाह रहेगा
2: इंशाल्लाह
1: जी। ओके सामान, ये थे चौधरी शौकत साहब जो कि एक बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात की हुकूमती लेवल पर, जब उनसे सवाल किया गया उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि वो अपोजिशन में नहीं है लेकिन साथ ये भी मान गए कि अपोजिशन में, और ये भी मान गए कि हम जमहूरियत पसंद है तो जमहूरियत के साथ चलते हैं, और मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है और इसी तरह होना चाहिए, और जो है हुकूमत में रहते हुए भी अगर कोई बंदा तनकीद करता है तो उसको दाद देनी चाहिए आज के दौर में अगर पाकिस्तान में कोई तनकीद करता है तो।
0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

चाइना के साथ हाथ बढ़ाए हैं और उसमें चाइना की मेहरबानी है, चाइना ने आगे कदम बढ़ाए हैं। चाइना ने जहां जाके वहां ईरान के अंदर बैठ के जाके $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के MOU साइन कर लिए हैं। आज ईरान ने चाइना की बात मान के, आज तक वो बात कभी उसने पाकिस्तान की नहीं मानी थी, जो आज उसने चाइना की बात मान ली है। ईरान आज इराक के साथ सुलह करने के लिए तैयार हो गया है, ईरान आज तुर्की के साथ सुलह करने के लिए तैयार हो गया है, ईरान आज सऊदी अरेबिया के साथ सुलह करने के लिए तैयार हो गया है। पाकिस्तान के जो जो जो मशवरे थे, आज उसके ऊपर अमल करने का वक्त आ गया है। चाइना ने इंडिया के साथ जब मामला खराब हुए, इंडिया के साथ जब जंग छिड़ी, इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करके उनके इलाके के अंदर घुस के कई किलोमीटर अंदर जाके उसके इलाके पे कब्जा कर लिया, इंडिया की दौड़ें लगी। इस वक्त मैंने आपके प्रोग्राम तकरीबन हर प्रोग्राम में मैंने बताया था कि जब वक्त आएगा तो श्रीलंका भी उठेगा, जब वक्त आएगा तो मालदीप और नेपाल भी उठेगा। आज वो वक्त आ गया है। नेपाल ने बाकायदा तौर पर इंडिया के खिलाफ जो ना वो खड़ा होकर साबित कर दिया है। नेपाल की आवाम इस वक्त जो है बच्चा बच्चा इंडिया के खिलाफ हो रहा है। मालदीप ने उसके खिलाफ बयान दे दिए हैं, श्रीलंका उसके खिलाफ खड़ा है। चाइना सीधा उठ के गया है नॉर्थ कोरिया के पास। नॉर्थ कोरिया ने के सदर ने और चाइना के सदर ने दोनों ने डिनर करने के दौरान ही, मुलाकात के दौरान ही ऐलान कर दिया, नॉर्थ कोरिया की तोपें, नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर मिसाइल इस वक्त इंडिया और अमेरिकन और इसराइल के जो जो बेस जहां जहां जिस जहां जहां जा वो टारगेट कर सकता है उसकी तरफ उसने उसी वक्त मीटिंग के दौरान ही उसने ऑर्डर किया कि ये सारे सारे रुख मोड़ दिए जाए। क्यों इस वक्त इन बातों को डिस्कस नहीं किया जा रहा? क्यों हम लोगों को सांप सूंघ गया है? क्यों इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया को सांप सूंघ गया है? क्यों इस वक्त ये बातें नहीं की जा रही? क्यों नहीं बताया जा रहा कि इस वक्त मुस्लिम दुनिया के अंदर क्या क्या क्या क्या क्या क्या रद्दबदल आ रही है? क्यों इस वक्त जो थर्ड वार्ड जो होनी है, जो थर्ड वार्ड के जो आसार है, जो सिम्टम है, वो ऑन ग्राउंड इस वक्त बाकायदा तौर पर हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं बाकायदा सऊदी अरेबिया के अंदर, रियाद के अंदर, जद्दा के नजदीक तक भी मिसाइल जो फेंके गए, क्यों उनका जिक्र नहीं किया गया? क्यों उसके बारे में मीडिया नहीं बोला? आपके सऊदी अरेबिया के, मैं पिछले चार प्रोग्राम में मैं बार बार बोल रहा हूं कि सऊदीया के शाही खानदान का क्या बुरा हशर कर दिया गया है, उसके 50 शहजादों को क्यों मर्डर कर दिया गया, और अगर ये खबर गलत है तो वो 50 शहजादे बोलते क्यों नहीं है? शहजादा इस वक्त जो वलीहद है, शहजादा जो उसकी 2 महीने 2.5 महीने के बाद, ये 3 दिन पहले उसकी खबर रिलीज की गई कि उसकी हालत नासाज है, तबीयत नासाज है, वो इस वक्त जेरे इलाज है। 2.5 महीने उसकी खबर क्यों नहीं निकले दी गई? और अगर वो जेरे इलाज था तो कहां जेरे इलाज था? अगर उसको बीमारी कोई है तो क्या बीमारी है? कतर टीवी ने और ईरान टीवी ने सऊदी वलीहद के मर्डर होने की खबर क्यों दी थी? ये सारी खबरें क्या राजा साहब को डेनमार्क में बैठे हुए राजा साहब के रेडियो के लिए सुनने वाले बेशुमार मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को क्या ये सुनाई नहीं देती? क्या उनकी तवज्जो उसकी तरफ नहीं होनी चाहिए? क्या वो डिग आउट नहीं कर सकते? तो जनाब यही वो जरूरी बात है जो आपको डिग आउट करनी है, जो आपको सुननी है, जो आपको निकालनी है। इन मालूमात को अगर आपके पास नहीं है तो आप यकीनन सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को बुरा भला, इमरान खान के लिए सच्चे और झूठे नारे लगाते रहोगे, या वाइस वर्सा मैं ये करता रहूंगा। लेकिन ये वो जुल्म है जो हमारे साथ, हमारी आवाम के साथ, हमारी नौजवान नस्ल के साथ कर दिया गया है। हमारे साथ ये जुल्म हमारी नौजवान नस्ल को तकसीम करके कर दिया गया है। हमारे साथ ये जुल्म हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को तकसीम करके कर दिया गया है। ये जुल्म नहीं है, ये जुल्म शदीदा है। और हम हंसी खुशी बड़े ही मासूमाना तरीके से हंस हंस के उल्टे सीधे बयानियां बना के, उल्टे सीधे फेसबुक के सोशल मीडिया पर पोस्टर बना के हम बड़े खुश हैं, एक दूसरे को गाली निकाल के, एक दूसरे को जिच करके, एक दूसरे के खिलाफ झूठ बोल के। ये जुल्म और ज्यादती जो हो रही है, हमें देखना है कि हमारे ये इतने मुस्लिम दुनिया के ममालिक को तबाहो बर्बाद करने के बाद अगला मुल्क किसकी बारी आ रही है, ये साजे अगला मुल्क किसकी तरफ जा रही है? आज चाइना ने तुर्की का साथ देने का अहद कर लिया, आज चाइना ने ईरान का साथ देने का अहद कर लिया, आज चाइना ने बाबांगे दोहल कह दिया कि मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं, जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। आज इस वक्त जो चाइना कॉरिडोर पाकिस्तान से जो निकलना था, उसकी जो तरक्की को, उसके जो मंसूबों को रोक दिया गया, आज भी चाइना उन्हीं मंसूबों के ऊपर दोबारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, दोबारा उसको चलाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। उसने अभी भी बयान दिया है, हम एक लस

0: अपना तब्दीली कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ मदद के लिए अपने उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए एक लफ्ज एक प्रोजेक्ट भी हम चेंज नहीं कर रहे। लेकिन आप लोगों को देखना यह है, आप लोगों को समझना यह है कि क्या हमारे मुल्क वतन अजीज सरजमीन उसके अंदर मौजूद इस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट और इस मौजूदा गवर्नमेंट को लाने वाले वो ताकतें, वो सोर्सेज, वो खलाई मखलूक जो कि बैनुल अक्वामी है और वो फैक्टर्स जो कि हमारे इंटरनल मामला को लेके बैठे हुए हैं, कलमदार संभाल के बैठे हुए हैं, हमारी इंटेलिजेंसिया, हमारी आर्म फोर्सेज, क्या उनको ऐसा ही करना चाहिए? और अगर ये को गलती हुई है तो कम अज कम मैं पाकिस्तानी हूं, आप पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के बारे में बोल रहे हैं, तो हमें फौरी तौर पे हमें रिकनसाइल करना है, रिकंसिडर करना है, हमें उन गलत फैसलों को दोबारा फौरी तौर पे रद्द करके, कैंसिल करके, खत्म करके हमें फिर दोबारा जो असल सही पॉजिटिव फैसले हैं वो दोबारा करने हैं। और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जहां जहां तब्दीलियां पैदा हो रही हैं, जहां जहां तब्दीलियां हो रही हैं, तैयब अर्दोगान के दौरा पाकिस्तान के बारे में मैं आपके पिछले एक प्रोग्राम में बात कर चुका।
1: शाकिर साहब, ये कोरोना वायरस का फेज टू है, इस बारे में क्या कहेंगे आप, ये क्या है?
0: जी मैं बिल्कुल कोरोना वायरस का आपका बड़ा अहम नुकता है, और इस वक्त कोरोना वायरस बहुत तेजी के साथ शिद्दत के साथ, मैंने आपको बताया था कि जुलाई के एंड पे इसका फेज टू स्टार्ट होने वाला है। जुलाई के एंड गुजर गया, ये अगस्त के 2-3 दिन शुरू हो चुके हैं, और लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूँ, फेज टू जो कोरोना वायरस का है वो बड़ी ही शिद्दत के साथ, बड़ी ही शद्दोमद के साथ, तेजी के साथ एकदम आपके सामने खड़ा होने वाला है। आज मैं बरतानिया से बैठा बोल रहा हूँ, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने कल, जबकि जिस दिन ईद का दिन था, कल उसने दोबारा फिर अनाउंसमेंट की है, हमें यहाँ जो लॉकडाउन में जो नरमियां की गई थी वो दोबारा कैंसिल होने जा रही हैं। आज यहाँ फिर ग्रेटर लंदन का जो मेयर है वो फिर दोबारा परेशान है, हमारे ट्रेवलिंग के ऊपर, हमारे मिलने मिलाने के ऊपर, हमारे कारोबारों के अंदर फिर दोबारा से सख्तियां शुरू होने वाली हैं। पाकिस्तान के अंदर एकदम से 2 दिनों के अंदर एकदम से फिर दोबारा बूस्ट कर क्या है। इंडिया में मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में कहा था, ये 7-8 वो मुल्क हैं जिनको इंतहाई मिजरेबल दिखाया जाएगा, इन 7-8 मुल्कों के अंदर इंतहाई बुरे हालात कोरोना के पैदा किए जाएंगे, फिर दोबारा बेशुमार मौतें वाक होंगी, 1.25 करोड़ के लगभग ये ऑन द रिकॉर्ड ले आए हैं कोरोना पॉजिटिव लोगों को, जिन्होंने इनशाला आइंदा 2 या 3 महीनों में इस फिक्र को 2 करोड़ करना है। ये मेरी बात आप भी और आपके सुनने वाले भी नोट कर लें, ये जो इनकी इनका जो एक सेट प्लान है, उस सेट प्लान के अंदर 1 मिलियन लाशें इन्होंने दिखानी है कोरोना की, और 2 करोड़ अफेक्टेड लोग इन्होंने दिखाने हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे जो इस वक्त कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो चुके लोग हैं। और इसी कोरोना पॉजिटिव के सेकेंड फेज के अंदर बिहाइंड द सीन, ये जो मैं जिन जंगों की तरफ मैंने इशारा किया है, जो सऊदी अरेबिया के अंदर ईरान, तुर्की, उर्दन, शाम, ये लीबिया, इराक, ये अफगानिस्तान और सोमेश पाकिस्तान और इंडिया, कश्मीर, ये इन तमाम इलाकों के अंदर ये जो थर्ड वार्ड के आसार शुरू हो चुके हैं। जनाब अली, इस सिलसिले के अंदर बहुत सारे बड़े मुल्क जो हैं, बहुत सारे बड़े मुल्क वो अमेरिका के खिलाफ हो चुके हैं, शदीद खिलाफ हो चुके हैं। अमेरिका के अंदर इस वक्त बम धमाके हो रहे हैं, वहां दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, उनको छुपाने पड़ रहे हैं, उनका अपना प्रेसिडेंट का इलेक्शन इस वक्त जो है वो जेपरडाइज हो चुका है, वो कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो चुका है, उन्हें खुद समझ नहीं आ रही है कि हमारे आइंदा आने वाले इलेक्शन में क्या होने वाला है, हमारा मुस्तकबल क्या है। उस वक्त डिस्कशन ये हो रही है कि रशिया के अंदर बैठ के साइबर क्राइम के जरिए उनके उनके हेर फेर कर देता है उनके इलेक्शनों के अंदर। जी इस वक्त अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी, पड़ रही है। चाइना ने बगबांगे दोहल खड़ा होने का ऐलान कर दिया है, चाइना ने हर उस मुल्क का साथ देने का मुसम्मम इरादा कर लिया है कि जो इन ताकतों को आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं। जर्मनी ने मुखालफत कर दी है बकायदा तौर पे, जर्मनी का इस वक्त टॉप के ऊपर चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका के साथ, नहीं बता रहे हैं आपको ये लोग। ट्रंप का और मर्कल का इस वक्त आपस में चपकलश चल रही है शदीद किस्म की, और ये शदीद मुखालफत जो है ये यूरोप के सिर्फ एक मुल्क की नहीं है, सिर्फ जर्मनी की नहीं है, और जर्मनी नवाज जितने भी 2, 4 या 5 मुल्क हैं यूरोप के अंदर, वो सारे के सारे जर्मनी का साथ देंगे। आपको वाजे तौर पर मैं पहले भी बहुत दफा बता चुका हूँ, आज फिर एक दफा दोहरा देता हूँ, रशिया इस सारे ब्लॉक की पूरी फुल सपोर्ट करेगा, वो कभी भी अमेरिकन ब्लॉक की, इसराइल ब्लॉक की सपोर्ट नहीं करेगा। रशिया की और तुर्की के आपस में दोस्ताने शुरू हो चुके हैं, उनके बिहाइंड द सीन इस वक्त शेक हैंड होने शुरू हो गए हैं। रशिया के और तुर्की के जो आपस में मिसाइल थे जो कि वहां शाम की जंग की वजह से खड़े हो गए थे, वो इस वक्त हल हो रहे हैं। कतर जो है वो पॉजिटिव फुटिंग पे आ गया है। कुवैत जो है वो दोबारा शामिल होना चाह रहा है मुसलमान ब्लॉक के अंदर। तो ये सारे पहलू जो हैं, क्या हमें आंखें बंद करके सिर्फ एक दूसरे को कुत्तियां करके हमें जाया कर देने चाहिए? बिल्कुल नहीं। हम पाकिस्तान इस वक्त कुर्रा अर्ज के ऊपर जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जो उम्मत मुसलमा है, और जो मुस्लिम ममालक के जो मुल्क है 51-52, उन मुल्कों के अंदर हम टॉप ऑफ द लिस्ट मुल्क हैं। तैयब उर्दगान ने पाकिस्तान की आवाम की, पाकिस्तान की कौम की, पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया की, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की, और पाकिस्तान के एटॉमिक पावर की इस कदर उस शख्स ने, उस कौम ने तारीफ की है, हमें खुद अपनी तारीफ के बारे में पता नहीं है। तैयब उर्दगान ने आया सूफिया के अंदर जुमा पढ़ा, और उसके बाद जो उसने अनाउंसमेंट की है वो गौरतलब है। और उसको अगर हम अपने आप को मुस्लिम उम्मा का हिस्सा नहीं समझते हैं, मुसलमान नहीं समझते हैं, तो रद्द कर दो तुर्की को, रद्द कर दो तैयब उर्दगान को, रद्द कर दो खराफते राशिदा को, रद्द कर दो सत्र समानिया को। और अगर आप मुसलमान हैं, अगर आपका कुरान के ऊपर यकीन है, अगर आप अल्लाह को एक मानते हैं, अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके आखिरी नबी हैं, तो आपके ऊपर फर्ज है, आपके ऊपर वाजिब है कि आप खड़े हो जाएं, आपका आपकी नियत जो ना वो बांध लें और मुंह तरफ किबला शरीफ कर लें। आपके किबला के खिलाफ, आपके मक्का और मदीना के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, उनको पहचानिए, उनकी तरफ नजर उठाइए, उनके खिलाफ होने वाले फैसलों के खिलाफ खड़े हो जाइए। तैयब उर्दगान पाकिस्तान का बार बार बार बार जिक्र क्यों करता है कि ये सारी दुनिया को पता है कि दुनिया के इस हिस्से में एशिया, जनाब अली आपके सुनने वालों को अगर आपके पास वक्त हो तो मैं 2 मिनट में आपको एशिया के अंदर, एक दुनिया के अंदर जो हमारी मुस्लिम उम्मा की जो तादाद है, जो हमारी पॉपुलेशन है, उसके अंदर 2 स्प्रिंग हैं, एक एशिया स्प्रिंग है, एक अरब स्प्रिंग है। अरब स्प्रिंग के सारे मुल्क इकट्ठे कर लो, सारे मुल्क इकट्ठे करके उसकी आबादी काउंट कर लो, तो इंडोनेशिया, मलेशिया या पाकिस्तान के बराबर बनती है। लेकिन जो एशिया स्प्रिंग है जिसके अंदर बेशुमार मुल्क हैं, उनकी बेबहा आबादी है, उस बेबहा एशिया स्प्रिंग के अंदर जितने भी मुल्क हैं, मुस्लिम मुल्क हैं, उनको लीड करने वाला मुल्क सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है पाकिस्तान। और याद रखिएगा, तुर्की एशिया स्प्रिंग में नहीं आता, वो एशिया स्प्रिंग में शामिल रहेगा, एशिया स्प्रिंग के साथ जुड़ेगा वो। तो ये जो ताकत बनने जा रही है, इस ताकत को देख रहा है रशिया, और रशिया को पता है कि ये क्या ताकत बनने जा रही है। चाइना को पता है ये क्या ताकत बनने जा रही है। मगरब को पता है ये क्या ताकत बनने जा रही है। अगर पता नहीं है तो बदकिस्मती से हमें पता नहीं है। हम इस कदर बेवकूफी के समुंदर में डुबकियां मार रहे हैं, गोते मार रहे हैं। मैं आपके सुनने वालों को, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अगर 10 लोगों को भी सुन ले, 10 लोगों के दिल में भी असर कर दे, तो मैं समझता हूं आपके प्रोग्राम की ये कामयाबी है। हमें बहसियत मुसलमान, बहसियत पाकिस्तानी और मुस्लिम उम्मा का एक खैर ख्वाह के तौर पे हमें खड़े होना है, बावकार तरीके के साथ खड़े होना है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ जब एक दफा आप खड़े हो गए, जब आपकी हां में हां मिल गई, जब आप लाइक माइंडेड हो गए, जब आपका सोचने का अंदाज एक हो गया, तो देखिएगा ये कुव्वत, ये कितनी बड़ी कुव्वत बन जाती है, ये कितनी बड़ी ताकत बन जाती है। हमें जो तकसीम दर तकसीम कर दिया गया है, उसकी वजह से हम रेजा रेजा हो चुके हैं। ये रेजा रेजा हुए जो लोग हैं, इनको इज्तमा की जरूरत है, इनको इकट्ठे होने की जरूरत है, इनको एक ही तरह सोचने की जरूरत है। और खुदा का वास्ता है, आप वो जो साजिशें जो हुई थी खिलाफत राशिदा को तबाह की जो सबब बनी थी, जो मौलिया दौर के जो तबाही का जो सबब बनी थी, जो इस्पानिया की हमारी जो मुस्लिम कुव्वत का जो जो तबाही का बायस बनी थी, जो मुसलमानों के तमाम बड़े बड़े जो फातहीन थे उनकी जो तबाही का बस बायस बनी थी, वो थी गद्दारी, और वो थी हमारे जो उम्मत के मुसलमान, उनके जो मुखालफ थे, जो दुश्मन थे, वो गद्दार उन्होंने प्रोड्यूस कर दिए थे हमारे अंदर, वो खुद घुस बैठे थे हमारी शक्लें बना के, हमारा लिबास पहन के, हमारे चोगे पहन के, हमारी तारीख को याद करके, हमारे कुरान को याद करके, हमारे जैसी दाढ़ियां रख के हमारे अंदर घुस के, हमारे सिस्टम के अंदर घुस के, हमारी हुकूमतों के अंदर घुस के और हमारे मीडिया के अंदर घुस के हमें जलीलो ख्वार कर रहे हैं। आज इस वक्त मेरा दिल आपका पत्नी खून के आंसू रोया कि नहीं रोया, सारी उम्मत के एक एक शख्स का दिल रोना चाहिए, खून के आंसू रोना चाहिए। खाना काबा के अंदर इस साल 2020 का जो हज हुआ है, जरा उसके ऊपर नजर तो चढ़ाइए, वो जो 10,000 लोगों को ऑर्गेनाइज तरीके से लाइन में लगाकर जो हज करवाया गया है, जो हज के लवाजमात पूरे करवाए गए हैं, जो सही करवाई गई है, जो तवाफ कराया गया है, जो मिना पे ले जाया गया है, आप उन 10,000 लोगों के चेहरों के ऊपर गौर तो कीजिए और उन 10,000 लोगों के अंदर कितने लोग हैं जो गद्दार हैं, कितने लोग हैं जो दुश्मनों ने अपने अपने उसमें दाखिल कर दिए गए हैं और वह चप्पा चप्पा वो इस वक्त आपका जो ब्लू प्रिंट है वो बना रहे हैं सऊदी अरेबिया का। राजा साहेब, अगर आपने और आपके सुनने वालों ने इन बातों के ऊपर गौर नहीं किया तो यकीन कीजिए वो दिन दूर नहीं है जब आपके बच्चों को आज से भी इंतहाई बुरे हालात देखने पड़ेंगे। और अगर आप मेरे पाकिस्तानी बहन भाई इससे भी बुरे हालातों वाकयात अपने मुल्क के देखना चाहते हैं, अपनी कौम के देखना चाहते हैं, अपनी नौजवान नस्ल के देखना चाहते हैं, अपने बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल को देखना चाहते हैं और मुस्लिम उम्मा का देखना चाहते हैं, तो फिर लगे रहो मुन्ना भाई, फिर आपको मना कोई नहीं कर सकता, फिर आपको आपको मना करने के लिए कोई भी नहीं आएगा, फिर तो सारा दुश्मन जितने दुश्मन आपके हैं वो चाहते ही यही है कि आप इसी तोड़फोड़ का शिकार रहो, आप इसी आपस में झगड़ आप आपस में झगड़ते रहो, आप इसी तरीके से एक दूसरे को नंगा करते रहो। अगर आपको पता नहीं है तो ये भी जान रखिए, सऊदी अरेबिया के एक सबका इंटेलिजेंस के बहुत बड़े अफसर ने जो राज अफशा किए हैं, जो मुस्लिम उम्मा के खिलाफ जाते हैं, जो सऊदी अरेबिया के खिलाफ जाते हैं, जो हमारे वतन पाकिस्तान के खिलाफ जाते हैं, हमारी अफवाज के खिलाफ जाते हैं, हमारी उन पॉलिसियों की तरफ जाते हैं जो कि दुश्मन इस्लाम के दुश्मनों की साजिशों के खिलाफ हमने जो हमने तैयार कर रखी थी, वो एक शख्स ने किसी कॉन्फ्रेंस में वो बयान कर दी है। तो ये वो सारे वो काम है जो गद्दार इस वक्त कर रहे हैं, गद्दारों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आपके दरमियान आपको अंदाजा भी नहीं है उन गद्दारों की बनाई हुई पॉलिसियां आपके मीडिया के जरिए आपके घरों के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। वो मीडिया का जो बयान करदा जहर है, जो बयान करदा जो तरबियत है, जो बयानिया है, आपके बच्चों के जहनों को वो मफलूज कर रहा है। दिन ब दिन वही काम आपके बच्चों के साथ पेश आ रहे हैं जो आज से 600 साल पहले 700 साल पहले जो पेश आना शुरू हो गए थे खिलाफत राजदा के साथ, जो उस वक्त के बड़े बड़े इंतहाई बड़े बड़े जंगजुओं के खानदानों के अंदर पैदा कर दिए गए थे। तो आज जिस तरफ हम जा रहे हैं, जिस नंग धड़ंग हम कैफियत का शिकार होते जा रहे हैं, तो क्या उसके लिए इस वक्त जो साहिब नजर हैं, कम से कम वो तो उठे, जो साहिब नजर हैं वो तो आंखें खोलें, आंखें खुल जाए तो देखने के बाद, गौर करने के बाद, जायजा लेने के बाद बयान तो करें उन मासूम लोगों को, और कुछ नहीं कर सकते तो अपने मासूम घर वालों को तो बता दें, वो साहब नजर, वो अहले नजर, वो अहले जिक्र, वो जो जो जो जो जो, जो फिक्र करने वाले लोग हैं वो तो कम से कम खड़े हो जाएं, वो और कुछ ना करें, वो कहीं कोई तब्दीली ना लेके आए, अपने घर के अंदर जो मासूम नौजवान नस्ल है जो भटक रही है, जो बिला वजह इस गंदे मीडिया के जो प्रोपेगंडा के साथ बहक जाते हैं, लहक जाते हैं, उनको तो कम से कम पैगाम दे दें जो सही पैगाम है, जो असल पैगाम है। आपके टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के ऐसे ऐसे हराम खोर लोग हैं, एंकर पर्सन है आपके, ऐसे ऐसे मरदूद लोग हैं, वो आपकी इस्लाम की तारीख को मसख कर रहे हैं, वो आपके इस्लाम की तारीख के बड़े बड़े जो जो जो जो जंगजू थे उनकी तारीख को, उनकी मालूमात को वो तबाह बर्बाद कर रहे हैं, वो गलत तरीके से बयान कर रहे हैं। कोई मुल्क और कोई कौम अपना वकार बढ़ा ही नहीं सकती है, किसी मुल्क का परचम सरबुलंद हो सकता ही नहीं है जो अपनी तारीख के शाहकार जो वाकयात हैं, जो हिस्ट्री है, उसके जो फतुहात हैं, जो उसको रद्द कर दे। جو اپنے قائدین کے خلاف جو بکواس کریں, جو اپنے قائدین کے خلاف, جو اپنے ہمارے ملک و ملت ہیں جو ان کے خلاف بکواس کریں. ان حرام خوروں کی آنکھوں کے اندر دونوں انگلیاں کیوں نہیں گھسیڑتے آپ؟ ان کا گریبان پکڑ کے ان کے ٹینٹ وے کے اوپر اپنا گوڈا کیوں نہیں رکھتے اس کے آپ؟ وہ کیوں آپ کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے آپ کے گھروں کے اندر داخل ہو کے آپ کے گھر والوں کو کیوں کیوں کیوں کیوں, کیوں وہ تباہ برباد کرتے ہیں ان کی سوچ کو؟ اور مجھے امید ہے کہ میرے بہن بھائی جو اس وقت آپ کے اس ریڈیو کے ذریعے سن رہے ہیں, میرے وہ بہن بھائی ہیں, یار مجھ سے کسی چیز کی مخالفت کرنی ہے تو کر لو, مجھے برا کہنا ہے تو بشک کہہ لو, کوئی دل میں دو چار گالیاں ہیں تو وہ بھی نکال لو, کسی کی مخالفت میں کسی کی حمایت میں جو کچھ کرنا چاہتے میرے ساتھ برا سلوک کر لو, میں حاضر ہوں, کر لو میرے ساتھ جو برا سلوک کرنا ہے. لیکن خدا کا واسطہ ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, اپنے ملک و قوم کے لیے, ملت کے لیے, اپنے پرچم کے لیے, اپنے سرزمین کے لیے, اس کی سربلندی کے لیے بھی تو کچھ سوچ لو. براہ کرم آج ہی اگر جو میں نے پوائنٹ کیے ہیں, آج گوگل کا زمانہ ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, آپ کے پاس سب کے پاس فری انٹرنیٹ موجود ہے, تو براہ کرم جو میں نے جن میں لڑائیوں کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے کھول لیجئے. اگر آپ کو ذرا سا بھی آپ کے دل کے اندر درد ہے, اگر آپ کی آنکھوں میں کسی وقت کسی کی بات سن کو کبھی آنسو آتے ہیں, تو امت مسلمہ کی اس وقت جو حالت ہے اس کے اوپر دو آنسو بہائیے, انٹرنیٹ پہ جائیے, ان تمام حالات و واقعہ کو غور سے دیکھیے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے, یہ کس طرح ہم بڑھ رہے ہیں, کس طرح ہم جا رہے ہیں, ہم کیوں اپنے ہاتھ میں کلہاڑی پکڑ کے اپنے ہی پیروں کو کاٹنے کے لیے کیوں ہم مصر ہیں, کیوں ہم اپنے بچوں کے مستقبل جو آج سے صرف 5 سال کے بعد, 10 سال کے بعد میں نے بھی مرکب جانا ہے. آپ لوگوں میں سے بھی اکثر جو میری بات سن رہے ہیں, کوئی مجھ سے پہلے چلے جائیں گے, کوئی مجھ سے تھوڑے دن کے بعد چلے جائیں گے, مرکب جائیں گے, زمین کے اندر دفن ہو جائیں گے, کیڑے مکوڑے کھائیں گے ہم سب کو, لیکن پیچھے جو میرے بچے ہیں, میرے بچوں کے بچے جو آنے والے ہیں, ان کو ہم کیا زمانہ دے کے جا رہے ہیں, کیا زمانہ ان کو ملنے والا ہے, ذرا اس کی طرف بھی غور کر لیجئے. آپ کو پینے کے لیے کون سے مشروبات چاہیے, وہ پینے کے بعد آپ کو کتنا مزہ آتا ہے, کتنا سکون آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, وہ مشروبات آپ کو پسند ہے کہ نہیں پسند ہے, آپ کو مغرب پسند ہے کہ آپ کو مشرق پسند ہے, آپ کو آزادی پسند ہے کہ آپ کو اسلامی تہذیب پسند ہے, آپ کو سیکولرزم پسند ہے کہ آپ کو اسلامی تہذیب پسند ہے, کچھ بھی آپ, لیکن آپ اس کا نتارہ تو نکال لیجیے, آپ اس کا نتارہ تو نکال لیجیے کہ وہ جو سیکولر کر رہے ہیں آپ کو, جو آپ کو سیکولر کرنا چاہتے ہیں, ان کا اصل مشن کیا ہے؟ وہ جو لوگ آپ کے بچوں کے ہاتھوں کے اوپر یہ پلے گیمز, یہ ویڈیو گیم, یہ خون خوار قتل و غارت کے جو ویڈیو گیم آپ کے ہاتھوں میں پکڑا کے آپ کی نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, ان کی اخلاقیات تباہ کر رہے ہیں, ان کے ذہنوں کو تباہ کر رہے ہیں, کیا وہی قتل و غارت کی ویڈیو گیم ان کے بچے کھیلتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے, یوٹیوب کے اوپر, گوگل کے اوپر یہ ساری معلومات ہیں. آپ کے بچوں کے ہاتھ کے اندر جو اریانی ہے, آپ کے بچوں کے ہاتھ کے اندر یہ ڈرامے اور جو فلمیں ہیں, آپ کے بچوں کے ہاتھ میں یہ پلے اسٹیشن اور یہ جو مار دھاڑ کی, قتل و غارت کی, خون خرابے کی جو ویڈیوز ہیں, یہ جو ویڈیو گیمز ہیں, کیا یہ سیم ساری کی ساری چیزیں ان کے بچوں کے ہاتھ میں بھی ہیں؟ اگر آپ ذرا سا غور کر لیں, شراب کے نشے میں رہنے والے لوگ مسلمانوں, نفرت میں اور تقسیم کے اندر تقسیم ہوئے مسلمانوں, پاکستانیوں, مختلف طرح کے نشے میں گرفتار لوگوں, زانیوں, زنا میں گرفتار لوگوں, چرس کے نشے میں گرفتار لوگوں, شراب کے مختلف ذائقوں میں گرفتار لوگوں, شراب جس کی شکل بھی پیشاب جیسی ہے اس کے رسیا لوگوں, ذرا یہ غور کرو, تمہارے بچوں کو جو چیزیں پکڑا دی گئی ہیں, جو اریانی, جو فحاشی, جو ننگی فلمیں, ننگے ڈرامے, اریاں بات چیت, ہاں جی یہ واٹس ایپ, یہ فیس بک, یہ سوشل میڈیا, یہ ویڈیو گیم جو آپ کے بچے اس وقت استعمال کر رہے ہیں, کیا ان کے بچوں کے ہاتھوں میں بھی وہ ہے؟ اگر مجھ سے سننا چاہتے ہیں تو نہیں ہے. میں یہاں راج صاحب آپ سے اجازت چاہوں گا, وما علینا الا البلاغ المبین, میرا کام سچ بولنا ہے, آپ تک سچ پہنچانا ہے, مجھے کو سچ حق بات ملے تو میرا فرض ہے کہ میں آپ تک پہنچاؤں, میں وہی کام کر رہا ہوں. پاکستان ہمیشہ کے لیے پائندہ باد, ہم لوگ زندہ باد, راجہ صاحب آپ زندہ باد, اسلام پائندہ باد, پاکستان پائندہ باد انشاءاللہ, اور محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد.
1: سامعین, یہ تھے شاکر قریشی صاحب جو کہ برطانیہ کی فضاؤں سے ہمارے ساتھ تھے.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूं तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नात ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनजर रखते हुए दफ के साथ नजराना अकीदत बहुजूर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश खिदमत है।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: पर।
1: तुम इन पर दारोगा नहीं हो? हाँ, जिसने मुंह फेरा और ना माना।
0: فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: मोहतरम सामाइन, मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है मुनाफिकीन। कुरान हकीम के शुरू में अल्लाह ताला ने इंसानों को तीन ग्रोहों में तकसीम फरमाया है, नंबर एक मोमन, नंबर दो काफिर और नंबर तीन मुनाफिक। सबसे पहले अल्लाह ताला ने मोमिनीन का मुख्तसर जिक्र फरमाया है, फिर कुफार का जिक्र सिर्फ एक ही आयत करीमा में किया है और आखिर में मुनाफिकीन के बारे में इंतहाई तफसील से जिक्र फरमाया है। इन मुनाफिकीन का जिक्र कुरान मजीद में इतनी तफसील से इसलिए है कि ये माशरे के बदतरीन अफराद हैं। कुफार से कहीं ज़्यादा नुकसान इस्लाम को इन मुनाफिकों की वजह से पहुँचा है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान हकीम में इन मुनाफिकों के किरदार को पूरी तफसील से बेनकाब किया है। यही नहीं बल्कि इनके दर्दनाक अंजाम की भी मुफस्सल खबर दी है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान करीम में इन मुनाफिकीन के बारे में क्या फरमाता है। सूरतुल बकर की आयत नंबर 8 और 9 का तर्जमा है कि और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम खुदा पर और रोज़े आखरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। ये खुदा को और मोमिनों को चकमा देते हैं मगर हकीकत में अपने सिवा किसी को चकमा नहीं देते और इससे बाखबर हैं। मोहतरम सामईन, ज़रा गौर फरमाइए, हालांकि ये मुनाफिकीन अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं और रोज़े क़यामत पर यकीन का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार नहीं कर रहे। ये उस दौर के यहूदियों का रवैया था। और ये कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार ना किया जाए किसी भी बात का यकीन कोई मानी नहीं रखता। सूरतुल बकर की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि इनके दिलों में कुफर का मर्ज था, खुदा ने इनका मर्ज और ज़्यादा कर दिया और इनके झूठ बोलने के सबब इनको दुख देने वाला अजाब होगा। सामईन मोहतरम, इस आयत से ज़ाहिर होता है कि झूठ बोलना कोई छोटा मोटा मामूली गुनाह नहीं है बल्कि झूठ वो गुनाह अजीम है जो एक मोमन को मुनाफिक बना देता है। इसीलिए अल्लाह ताला सुरुल हज की आयत नंबर 30 में झूठ का बुतपरस्ती के साथ जिक्र फरमाते हैं। इरशाद होता है कि अपने आप को बुतपरस्ती और झूठ बोलने से बचाओ। मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम में मजीद फरमाता है सूरतुल बकर की आयत नंबर 11 और 12 का तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना डालो तो कहते हैं हम तो इसलाह करने वाले हैं। देखो ये बिलाशुबा मुफसद हैं लेकिन खबर नहीं रखते। आगे चलकर अल्लाह ताला फरमा

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है, एक ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए ला रहे हैं। 19/5/2026 का प्रोग्राम है। इस वक्त हमारे साथ एक्टिविस्ट तजिया निगार मोहतरम अदनान अली अमीन हमारे साथ है। अदनान, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको।
2: वालेकुम अस्सलाम दादा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप कैसे हैं दादा साहब?
1: अल्लाह का शुक्र अदनान, मौसम तो बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है, लेकिन बर्निंग न्यूज आप क्या ला रहे हैं?
2: ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जैसे आपको मालूम है यहाँ पे नेगोशिएशन चल रही थी डेनमार्क की गवर्नमेंट की, और उसमें जो कांग जोनस उसन पॉल्सन, उसने एक फैसला किया कि मैं एक गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वी विंस्टा लिपार लांग से कंसर्वेटिव मिस्टरडे पची ने के साथ मिलकर ये गवर्नमेंट बन जाए। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज है, अब देखते हैं कि कमिंग आवर्स में क्या होता है, क्योंकि रास लुके ने तो यही कहा है, ये उसने तो गुस्सा किया और वो थोड़ा शॉक में था जब उसको ये पता चल, और उसने कहा है कि ये एक फॉर पे लॉन्ग है जो उड़ नहीं सकता। तो ये तो एक बड़ी क्या कहते हैं अजीब बात होगी, और दूसरी बात मैं ये कहूँ कि ये फिर बहुत ही कम सर्पली गवर्नमेंट होगी, क्योंकि इसमें खाली सिक्स ऑफ मंडेट है।
1: तो इसको क्या इतनी मंडेट से हुकूमत बना सकते हैं? 46 बंदे इकट्ठे करके हुकूमत बन सकती है?
2: बन तो सकती है, ये तो कोई मसला नहीं। उसको उसको क्या कहते हैं कोई स्टोरे पची है जो है बाकी की आ जाए तो फिर तो उसके पूरे हो जाते हैं ना, 90 तो नहीं होते, 87 हो जाते हैं ना उसके। मगर मेरे ख्याल से तो ये बड़ा मुश्किल है, और आज रात को 9 बजे पता चलेगा जब लास्लो के आसमूस मीटिंग में आएगा वो क्या करते हैं और क्या नहीं कहता।
1: तो आपकी पार्टी सोशल डेमोक्रेट की मेते जो मौजूदा केयर टेकर वजीर आजम है वो क्या कह रही हैं?
2: वो कुछ नहीं कह रही, वो गायब हो गई हुई है, हो सकता है कि वो भी अब वो तो देखेंगे ना कि स्ट्रेटजी क्या करनी है।
1: तो जिस तरह पहले ल्यूके वो गायब हो गए थे, इस तरह मेते गायब हो गई है,
2: हो सकता है कि ये कमिंग आवर्स में ये जो अभी 6 घंटे हैं इसमें लास्ट लुके की और मेरे फर्स्ट की डेफिनेटली बात तो होगी अब, और हो सकता है कि मेरे
1: चांस है कि ये ऐलान कर दें कि हमारे पास अक्सरियत होगी या पूरी
2: नहीं, अभी तो नहीं ना कर सकता ये तो, अब देखें लास्ट लुके लास्ट मूसन जो है उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या करता है। और मैं तो मेरे लिए ब्रदर साहब बड़ा मुश्किल है कि उसके लिए बड़ा मुश्किल है, मुझे उसके लिए हर सिनेरियो मुश्किल है, मगर मेरे लिए बड़ा मुश्किल लग रहा है कि वो गवर्नमेंट में ना बैठे सारी उम्र, क्या कहते हैं आप देखें वो 2001 से लेके नहीं सॉरी 2001 से लेके अली प्राइम मिनिस्टर जब हेलिसोनी स्मिथ थी वो गवर्नमेंट में बाहर था उस वक्त, उसके बाद फिर एक पीरियड में वो बाहर हुआ है, फिर अब वो बैठा हुआ है, अब उसके पास पॉसिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट का हिस्सा बने। और आपको ये भी हमेशा याद रखना चाहिए इसको हर चीज के लिए 90 सीटों की जरूरत पड़नी है, तो ये बड़ी सरप्ली गवर्नमेंट है। मगर मैं तो व्यूअर्स को यही कहूंगा कि मेरा जो अंदाजा है कि शायद नया खोंगली इंतकाल आ जाए नया, क्योंकि कमिंग आवर्स में हो सकता है कि लास्ट लुके और मेरे फर्स्ट की बात तो डेफिनेटली होगी, अभी ये मान ही नहीं सकता ये दोनों आपस में बातचीत ना करें।
1: अदनान, ये सियासतदान इतने मैच्योर नहीं है कि इतने दिन भी ले लिए और हुकूमत नहीं बन रही जो है अफरा तफरी का शिकार है ये
2: सब, अब तो हुकूमत किसी ना किसी तरह से जरूर बनेगी। और मसला ये है ना कि देखें कम, अब तो उसने आप प्लो प्लॉक में तो एक किस्म का मीरा जो वो मीरा गैकेंग जो चाहता था वो तो डेड कर दी है, जो लास्ट लुके ने कोशिश की थी कि वो बने और क्या कहते हैं वो हुकूमत की बननी चाहिए थी जो इनकी कोशिश थी। मगर इसमें ये भी तो मसला है ना कि इसने जो चीज पेश की है चीजें बहुत करना चाहता है, मगर इसने ये नहीं बताया कि उनके पैसे कहाँ से आएंगे। तो इधर से आप देख लें कि ये बड़ा मुश्किल है कि ये क्या करने चाह रहा है, और मुझे लगता है कि उसलोन पास ने डिस्परेट हो गया प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए।
1: और आप किसकी कह रहे हैं, जो विंस्टर पार्टी के चेयरमैन है?
2: जी, जो विंस्टर के चेयरमैन है। और अभी ये भी तो हो सकता है ना कि कमिंग आवर्स में जो है लास्ट लुके खास मूसन अब जाएगा वापस, बात देखेगा अपनी اپنی ٹیم کے ساتھ, تو ہو سکتا ہے کہ کمنگ آور نے وہ یہ کہا لیکن نہیں میں چاہتا ہوں کہ نیا کھونگلی ہونا شروع آئے, کیونکہ اس نے یہ جو اس نے بات کہہ دیا نا کہ فور پہ لانگ ہے, اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ راضی نہیں ہے اس حکومت کے لیے.
1: تو جب یہ میٹنگز پہ جاتے ہیں تو ساری باتیں کرتے ہیں, جمہوریت کا نام چلتا, ظاہر ہے جمہوریت میں اسی طرح ہوتا ہے, اسی لیے جمہوریت کا نام لے کر بچا جا سکتا ہے ان چیزوں سے.
2: جی وہی راجہ صاحب, مگر راجہ صاحب میں بھی دیکھوں, میں بڑا حیران ہوں کہ یہ جو اس کو یہ جو چیز ہے اس میں یہ بھی تو دیکھیں نا کہ مسئلے بہت ہیں. آپ نے ہر چیز کے لیے ٹھیک ہے وہ تینوں اسٹوڈے پچی بن جائیں گی اس کے پیچھے آ جائیں گی, مگر مسئلہ یہ ہے کہ دوسری پارٹیاں جو ہیں ان کے پاس بھی 84-85 سیٹیں ہیں, تو وہ بھی تو یہی چاہیں گے نا کہ یہ گورنمنٹ جلدی ٹوٹے. تو مطلب
1: یہ ہے کہ سیٹوں کا انتظار ہے, کون سی وزارت ملتی ہے یا کون سی جو کمیٹیوں میں اچھی جگہ ملتی ہے, باقی تو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں.
2: ارے یہی ہے نا لال صاحب, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ سوسلون فالس نے جیسے آپ کہہ دیا کہ میں ساری پارٹیوں کے ساتھ ویکنگز کھول لے پہنلا کرنا شروع کرنے لگا ہوں, اور اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ صبر اس کو یہ کرنا چاہیے کہ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ابھی لاسٹ لوکر آپ کو کہہ دے کہ مجھے یہ چیز قبول ہی نہیں ہے, تو پھر تم کیا کرو گے؟ جب رات کو 9 بجے وہ آئے گا آپ اس کو پریشرائزنگ کریں, ٹھیک ہے آپ اس کو پریشرائزنگ کر سکتے ہیں, مگر اس نے بھی تو یہ دیکھنا ہے نا یہ چیز چل سکتی ہے کہ نہیں چل سکتی لانگ سیکٹر پہ. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کمنگ آورز میں کیا ہوتا ہے کہ یہ گورنمنٹ بنتی ہے کہ نہیں بنتی,
1: بنتی ہے یا کہ نہیں بنتی ہے. عدنان آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اس وقت ہمیں نیوز دی, آپ کا بہت شکریہ, آپ سے رابطہ رہے گا.
2: مہربانی پہ دادا صاحب, اللہ حافظ.
1: سامعین ناظرین یہ تھے عدنان امین علی جو کہ آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے تھے. سامعین ناظرین اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ کہنا چاہتے ہیں تو ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر, ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے.
3: سامعین کرام, FM 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामने नाज़रीन, आज मौसम इतना अच्छा नहीं है, बारिश भी हल्की हल्की बूंदाबांदी लगी रही, सारा दिन लगी रही, धूप भी निकलती रही। सियासत की तरह ये मौसम हर वक्त आंख में चोली खेलता रहता है। और अभी शाह साहब आपको खबरें देंगे, जल्जला भी है, इसकी बड़ी धूम है। शाह साहब ने खबरें ब्रेक करते हैं, बताते हैं। मस्जिद में भी बताया कि बच्चे बता रहे थे कि हम गिरने लगे थे। तो शाह साहब, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या खबरें लाए हैं?
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा फूर साहब आपको, आपकी टीम को, आपके जितने लिसनर नाज़रीन हैं सबको। अमूमन डेनमार्क में कभी कभी जलजले आते हैं, लेकिन वो कोपेनहेगन से बाहर और रॉसकिल्डे या यूलैंड में कभी कभी, लेकिन वो इतने ज्यादा बड़ा जलजला कभी नहीं हुआ। लेकिन इस दफा सुलोगो जो है वो हदब बना है, और सुलोगो के अंदर जो कोपेनहेगन से 30 किलोमीटर के फासले पे है, यहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे जलजला आया है, लेकिन जलजला इतना तेज था कि ये 3.9 स्केल के ऊपर, और बाज बता रहे हैं कि ये 4 से थोड़ा सा ऊपर था। और ये पूरे 2:14 पे और 35 सेकंड पे आया ये जलजला। और ये जलजले की लहर जो है ये सिर्फ यहाँ ही पे नहीं आई, ये शुरू हुई है बकायदा शुरू हुई है अपना इस

0: महसूस नहीं हुए, लेकिन इस दफा तो ऐसा लग रहा कि एक जो एक ही झटका आया है और उसने हिला के रख दिया है। लेकिन अभी भी डेनिश साइंटिस्ट और रिसर्चर जो है वो ये कह रहे हैं कि ये एक म्यूस्टिक, ये एक अजब सा किस्म का ये धमाका हुआ है, एक अजब किस्म का ये जलजला आया है। तो ये इसकी वजूहात को वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेशुमार लोगों ने जो है वो टेलीफोन किए हैं, क्योंकि आपको पता है कि डेनिश लोग जो है वो तो घबरा जाते हैं ऐसी कोई बात हो। तो उन्होंने कहा, कईयों ने कहा कि हमारे घरों की छतों में और दीवारों में जो है वो लकीरें पड़ गई हैं, और ये काफी था, लेकिन अल्लाह की रहमत हुई है कि ये एक ही झटका था और अब
1: अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
0: जी बिल्कुल नहीं हुआ, और इसके ऊपर कोई माली भी नुकसान अभी तक सामने जाहिर नहीं हुआ, लेकिन जो यहाँ के हमारी अदारे हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है लोगों से कि आप बिल्कुल ना घबराएं और आप अपने अपने घरों में रहें या जहाँ पे भी हैं, और हमें अगर बहुत ज्यादा कोई एमरजेंसी है तो हमें कॉल करें, तो वैसे घबराने की जरूरत नहीं है।
1: चलें शाह साहब, अल्लाह ताला हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो शाह साहब, ये जो सियासी जलजले आ रहे हैं, अभी तक हुकूमती जलजले आ रहे हैं, अभी तक मुख्तलिफ पार्टियों के जलजले आ रहे हैं, अभी तक ये जलजले छोटे छोटे शाख रुकते ही नहीं है।
0: यहाँ पे तो आपको पता है कि डेनमार्क के अंदर जो अब नया तरीके की जलजला आ रहा है वो ये है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डेमोक्रेट और जो है ये दूसरे मिलके तो अपनी हुकूमत बनाए, लेकिन क्योंकि अभी गेंद जो है वो वेंस्ट्रा के पास है और वो कोंगली से हम कहते हैं कि जो हमारे यहाँ की बादशाही है, बादशाह हमारा जो है उसने अख्तियार दिया हुआ है इनको, वेंस्ट्रा वाले को, कि भाई आप कोशिश करें अपने साथ किसी को मिलाए। लेकिन वहां पे लास्ट लुक रासमुसन जो है वो वहां पे भी वो जो है उनके साथ भी वो अखलाक नहीं मिल रहा, लेकिन
1: इनकी कोशिश कौन है
0: ये जो हमारे इस वक्त के कायम मकाम वजीर खारजा है, ये मॉडरेट जो जो पार्टी है उसका हेड है ये, और
1: किसी एक तरफ क्यों नहीं जाते,
0: बस इसको इसको चाहिए कि सबसे ज्यादा मैं हूँ और मैं ही किसी ना किसी तरह वजीर आजम बनूं, और इनके इसके अंदर और जो मेटर फैजिक्स है उनके अंदर असल में मुकाबला चल रहा है, और ना ये उस साइड पे जा रहा है और ना ये इस साइड को मान रहा है। तो अब ये जो वेंसा वाले हैं ये कह रहे हैं जी कि हम छोटी से छोटी भी हुकूमत बनाने तो हम इसको लेके चलेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो सोशल डेमोक्रेट है उन्होंने भी कह दिया है कि हम रेडिकल वेंसा को लेके साथ तो ऐसा को लेके तो हम हुकूमत बना लेंगे और हम आगे जाएंगे। लेकिन जो तजिया नगार है यहाँ के, अगर वो कहते हैं कि यही सूरत हाल रही तो फिर हमें नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ जाएगा, क्योंकि जो ब्लू ब्लॉक है वो इसको लास्ट लुकों को पसंद नहीं कर रहे, और इसी तरीके से सोशल डेमोक्रेट्स वाले जो है उनके भी लास्ट लुक से प्रॉब्लम है, और ये जो है 14 सीटें लेके और ये कोशिश कर रहा है कि भाई किसी ना किसी तरीके से बाय एंड सेल करके तो मैं हुकूमत में एक अच्छी पोजीशन बना लूं या मैं खुद जो है वो वजीर आजम बन जाऊं।
1: तो शाह साहब, लोग तैयारियां नहीं करते, लोग जो है तैयारी करके नहीं आते। तो शाह साहब, आपने देखा कि आप लोकल एक तंजीम के बानी है, बड़ा अरसा आपने इसको देखा और देख भी रहे हैं, एडवाइज भी कर रहे हैं, तो आपकी जमात में लोग जो है वो तैयारी करके नहीं आते डिबेट में।
0: जी मैं बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन मेरा क्योंकि उस जमात से सिर्फ एक तलक रह गया वो ये कि मैं भी मुस्लिम लीग हूँ और वो भी मुस्लिम लीग है, उसके अलावा मेरा कोई तलक नहीं, उसके अलावा मेरा कोई तलक नहीं, और क्योंकि मैं इस जमात में 1970 से चला रहा हूँ, तो अब क्योंकि सिर्फ एज ए कारकुन हूं मैं, और जो कुछ भी हुआ है और जो बातें भी हुई हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मुझे उसका बहुत अफसोस है और मैंने

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदार आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर हाजिर है। सामने नाज़रीन, जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है हम कोशिश करते हैं आपके साथ शेयर करें, जहाँ से भी हमें मिलती हैं। छुट्टी वाला दिन है तो इस वक्त साबका पार्लियामेंट के मेम्बर एक्टिविस्ट मलिक सिकंदर सदीक, जो मौजूदा सिटी काउंसलर भी हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। मलिक सिकंदर, आपको एक बार फिर अदार आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: जनाब राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जी।
1: सिकंदर, आप हमारे सामान्य नाज़रीन को बताएं कि इस वक्त क्या चल रहा है पार्किंग के हवाले से। अक्सर मैं सबसे बात करता हूँ, आपसे तो ज़्यादा बात करता रहता हूँ, जो भी हमारे मेहमान आते हैं मैं पार्किंग की बात करता हूँ, आप मसाइल उठाते रहते हैं और दबंग तरीके से पार्लियामेंट में भी उठाते रहे और आप कम्यून में आप बैठे हुए हैं, तो ज़रा पार्किंग के बारे में कोई अगर खबर है तो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें।
2: देखें, बात यह है कि जो कोपेनहेगन में आते हैं या रहते हैं और गाड़ी चलाते हैं या जिनके पास गाड़ी है, वो इस बात से बाखूबी उनको इस बात का पता है कि यहाँ पे कोपेनहेगन कम्यून में पार्किंग ढूंढना ये किसी वो क्या उसे कहते हैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से वो कम नहीं है, इस ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल। तो मैंने जब ये एक इशू है और मैंने इसलिए इस इशू को पे जरा रिसर्च किया, फोकस किया अपनी टीम के साथ, और इस पे बड़ी दिलचस्प सी एक सूरत हाल हमारे सामने आई है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पार्किंग ढूंढना बहुत ही मुश्किल है और हमें ये पता चला है, हमने जब फिगर्स एंड फैक्ट्स देखे हैं उसमें हमें ये पता चला है कि ऐसे बहुत सारे कोपेनहेगन में लोग हैं, और वैसे मैं बात यहाँ से स्टार्ट करूंगा, आप देखें कि इसके बावजूद के पार्किंग नहीं मिलती तो ये जो लेफ्ट विंग पार्टीज हैं स्पेशली इनोसलिस्ट एलचैनचु और एसएफ रेडिकल विनिस्ता, ये इसके बावजूद जो है पार्किंग मजीद जो है वो काम कर रही है और लोगों को बहुत इशू होता है। तो हमने इस पे जरा रिसर्च की है और हमारे जो लोग हैं उन्होंने इस पे काम किया है, तो हमें पता ये चला है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस शहर में जो इंट्रा उस्तापो, इंट्रा विस्तापो, इंट्रा नापो और ये जो अंदरून शहर है इसके अंदर रहते हैं, और ये आप कह सकते हैं कि अमीर लोग हैं, लेकिन ये इनके पास ये जो साइकिल होती है खैर साइकिल 50,000 की रखी हुई है और ये आम दिनों में साइकिल पे जाते हैं, लेकिन इन्होंने सब ने हमने वो एक मैंने एक नई टर्मिनोलॉजी निकाली है जिसमें मैंने कहा है कि ये फ्रिजेस पीला इन्होंने रखी हुई है, यानी कि इन्होंने ऐसी गाड़ियां रखी हुई हैं जो महीना महीना जो खड़ी रहती है और कभी महीने में एक बार इन्होंने समर हाउस जाना होता है तो ये उधर इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये समझ ले कि इनके पास गाड़ी आउट ऑफ नेसेसिटी नहीं है, जरूरत के तहत नहीं है, इनके पास पैसा है, आमतौर पर साइकिल चलाते हैं, इन्होंने समर हाउस रखे हुए हैं तो इसलिए उन्होंने गाड़ी भी रखी हुई है कि जिसको वो जब दिल करे रिक्रिएशन के तौर पर गाड़ी को यूज करते हैं। अच्छा, एक तो ये तबका हो गया। अब दूसरा तबका ये है कोपेनहेगन में जो आप समझ लें कि जिनको गाड़ी की जरूरत है, डेली बेसिस पे जरूरत है, वो कौन हो सकता है? वो मिसाल के तौर पे खस्ती ने हो सकती है जो सोशो असिस्टेंट है, यानी कि जो बूढ़ों का ख्याल रखती है, और वो अब रहती कोपेनहेगन के आउटस्कर्ट्स में है, लेकिन वो उसने जाना होता है हर्सहोल्म, वहां पे उसने ड्यूटी देनी होती है, शाम को वो घर आती है रात को, तो पार्किंग नहीं मिलती। या मुस्तफा हो सकता है, अब्दुल्ला हो सकता है, जो किसी फैक्ट्री में काम करता है टॉस्टोप में, खालसलोन में, और रात को घर आता है, उसको गाड़ी इसलिए जरूरत होती है और उसको फिर पार्किंग नहीं मिलती। ये दो आप समझ लें कि कॉफ सागी दो कैटेगरीज है जिन्होंने गाड़ियां रखी है, लेकिन जिन्होंने इशू क्रिएट किया हुआ है मैं समझता हूँ कि वो लोग हैं जिन्होंने फ्रिजेस गाड़ियां रखी है, ये जिनका मैंने अभी आखिर में जिक्र किया, जिन्होंने जरूरत के तहत रखी है उसको मैंने उस उन पेपरों में भी जो हम तैयार करते हैं उसमें मैंने उनको कहा कि ये नोवेंटी स्पील, एक फ्रिजेस स्पील, एक नोवेंटी स्पील। और हमने इलेक्शन के दिनों में भी ये बात कही थी कि हमारा ये दिल है, हमारा ये ख्याल है कि जिन लोगों के पास 9-10-12 मिलियन के मकान है कोपेनहेगन में, उन्होंने साइकिलें रखी हैं, गाड़ियां फ्रिजेस रखी हैं, इनको आप ज्यादा जो है पान पिसकैरा करें गाड़ियां रखने के लिए, और जिन जो लोग आम तबका है जिसको वर्किंग क्लास लोग हैं, आप आर क्लास जिनकी आमदनी ज्यादा नहीं है, उनको आप पेपोल एसेंस में मजीद छूट दें, ताकि ये जो अमीर लोग हैं, जो विल है उन्हें लोग हैं, ये क्या कहते हैं, इनकी जो ये फ्यूचर स्पील है इसको खत्म की जाए, और जिन लोगों ने नेसेसिटी के तहत गाड़ी रखी है, जरूरत के तहत रखी है, उनके लिए बेहतर से बेहतर हालात पैदा किए जाए। इसलिए आप नोट करेंगे, आप देखेंगे कि अक्सर कोपेनहेगन में भी इन्होंने ये इल और तील अपील का सिस्टम रखा हुआ है, और आप रात को गाड़ी पार्क करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि ये खाली होती हैं, ये जो तेल पीला वाली पार्किंग होती है, एल पील वाली पार्किंग होती है, और आप उसको जिस बंदे ने आम कार रखी है उसे जगह नहीं मिलती है। तो इसलिए हमने इलेक्शन के दिनों में कुछ प्रपोजल्स दी थी कि भाई ये जो एल पील और तेल पील फके हैं इसको रात को फ्री कर दिया जाए, अगर यहाँ पे ये एल पीला तेल पीला नहीं खड़ी तो जिस बंदे ने आम गाड़ी खड़ी करी मिसाल के तौर पर 6 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, आपको इजाजत होनी चाहिए कि आप यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सके। तो अलबत्ता बात यह है कि हमने ये महसूस किया, मैंने ये देखा कि कोपेनहेगन कम्यून में आप समझ लें कि 2 पार्टीज हैं, एक ये लेफ्ट विंग पार्टीज हैं जिनका वोटर ये अखतीमी का है, जो इंतपी में रहते हैं, जिनके पास पैसा है, ये इनके वोटर है, तो इस वजह से ये कहते हैं पार्किंग हटाओ पार्किंग हटाओ। और फिर उसके तरफ दूसरी जो पार्टी है वो है खुद से उली बगाल इलियांग से वगैरह, ये इनका दिल है कि पूरे शहर को एक पार्किंग बना दो। मैं समझता हूँ ये दोनों गलत है। इंडिपेंडेंट ग्रीन्स फ्री कॉयर ने, हम लोगों ने एक आप समझ लें एक हिकमत अमली के तहत एक हमने एक ओपिनियन और एक स्टैंड लिया हुआ है कि पार्किंग जो होनी है वो गद्दारी पार्किंग होनी चाहिए, ना ही कि सारे शहर को पार्किंग बना दो, तो ना ही कि सारे शहर से पार्किंग खत्म कर दो। या को से मम्मा तो उसमें अच्छा दो मुझे सॉरी, तो उसमें हमने ये कहा है कि जिनको जरूरत नहीं है गाड़ी की और जो बहुत कमाते हैं वो ज्यादा क्या कहते हैं पेमेंट करें, और ज्यादा जो है उन पे आप उनकी पार्किंग पे गाड़ियों पे फोकस करें, तो जो वर्किंग क्लास है उनको जो है सहूलत दी जाए और उनके लिए पार्किंग की बेहतरी जो है वो लाई जाए। तो इसलिए मैंने देखा है कि कई सालों से ये कोपेनहेगन कम्यून में ये पार्किंग पॉलिसी जो है ना ये ऐसी है कि ये जो वर्किंग क्लास है उसको उसके लिए सजा बन चुकी है। तो मैंने इस वजह से तलब किया है जो कोपेनहेगन की मेयर है लीन पावरफुल इनस्लेशन की छिकनी के मिलियो की जिसके अंडर ये पार्किंग आता है, उसको मैंने थर्सडे के दिन तलब किया हुआ है, और वहां पे मैं उसके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा, और उस पे बेसिकली मैंने उनको इस बात पे तलब किया हुआ कि आप बताएं कि जो आप लोग कई सालों से ये पार्किंग पॉलिसीज रखी हुई है इससे क्या जो वर्किंग क्लास है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आया है, आपने कभी इस पे फोकस किया है, और हम आगे क्या कर सकते हैं कि इस पार्किंग के इशू को गद्दारी पार्किंग की पॉलिसी जो है वो हम अपनाएं। और ये बहुत बड़े मैं समझता हूँ बड़ी दिलचस्प डिबेट होगी। और
1: सिकंदर आपने चूंकि उनको एक जो है वो सियासी तौर पर जो एक होता है प्रोटोकॉल तलब किया हुआ है, लेकिन इस बात को भी आप नोट कीजिएगा, ये वेस्टर्नब्रो की गेट पता हूँ जहाँ नई बिल्डिंगें बनी हुई हैं इनके नीचे बहुत बड़ी पार्किंग होती है, बहुत ज़्यादा पार्किंग होती है, लेकिन वो बिल्डिंग के लिए पार्किंग नहीं होती, वो उनको महंगी देते हैं इसलिए वो बाहर पार्किंग लेकर गाड़ियों को बाहर पार्क करते हैं। अगर आप पार्किंग में देखें तो बाहर टेस्ला गाड़ी पार्क हुई होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां पार्क की होती हैं, और उनके अंदर हैंडीकैप जो है स्किल्ड पड़ी होती है। मुझे ये समझ नहीं आती जो बाहर बने होते हैं उनके बाहर गाड़ियां ही गाड़ियां होती है, रात 12 बजे 1 बजे तक, उस पर कानून की पाबंदी ये लोग नहीं करते। तो ये लोग ये या तो ये सरमायादार हैं सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं।
2: बिल्कुल ऐसे ही मैंने ऑब्जर्व की है बात, और मैं असल में अब ये हम एक प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं, और इसमें मैंने सबसे पहले उनको तलब करके मैं उनसे पूछूंगा कि आप बताएं ये पार्किंग के सिलसिले क्या है। इसमें मुझे जो हमारा जो एंड गोल है वो ये है कि हम अब एक प्रेशर क्रिएट करेंगे इन पार्टीज पे और मेयर पे, और हम इससे कहेंगे कि आप जो है ये जिस तरह के आप बता रहे हैं, मैंने तो अभी आपको बताया कि ये एलपीला और जो होती है ये खाली खड़ी होती हैं रात को, इस पे फिर भी आप पार्क नहीं कर सकते। आप अभी बता रहे हैं कि इन्होंने जो नए मकान बनाए हैं फ्लैट, इनके नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग होती है, उसको इस्तेमाल नहीं करते। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको अगर हम
1: वो
2: एड्रेस
1: रात
2: करें,
1: को बिल्कुल खाली, तकरीबन खाली
2: बिल्कुल
1: होती हैं वो।
2: बिल्कुल, तो हम अगर इनको एड्रेस करें तो काफी सारी पार्किंग जो है वो निकल सकती है। तो इसलिए हमने अब मेयर से हिसाब से पहले सवाल ये है कि मेयर खुद बताए क्या वो समझती है कि ये पार्किंग जो पॉलिसी इन्होंने रखी है ये सही है, और अब आगे क्या किया जा सकता है इस चीज को बेहतर करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि सच्ची जो बात है, कोपनहेगन कम्यून में ये बहुत बड़ा इशू है। फर्क सिर्फ ये है कि ये उन लोगों को के लिए कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो वर्किंग क्लास है, जो शायद ज्यादा उस तरीके से ज्यादा कमाते नहीं है, उनकी फिर आवाज भी कोई नहीं है। क्योंकि जो लेफ्ट विंग पार्टीज हैं कोपनहेगन में, उनका अगर आप वोटर देखें तो ये काफी जो रिच लोग हैं जिनके अपने मकान है, जिन जो अच्छा कमाते हैं, ये जो अकादमी का आप कह लें, ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए हम इंडिपेंडेंट ग्रीस में, फ्री कोने में, हमने ये तहैया किया हुआ है पहले दिन से, और अब हम कोपनहेगन कम्यून में भी है, तो वहां पे भी आप देखेंगे कि हम आम लोग लोग जो है हम उनकी आवाज बनेंगे। इस पार्किंग के इशू में इन आम लोगों का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो हम अब कम्यून में आए हैं, तो हमने अब इस चीज को उठाया है, और हम इंशाल्लाह ताला इस पे मजीद काम करेंगे, और इस पे हम जो आम लोग हैं, जो वर्किंग क्लास है, उसकी हम नुमाइंदगी इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो थर्सडे के दिन ये डिबेट होगी। मैं आपको राजा साहब एज अ चेयरपर्सन इदारा आपकी आवाज, आपको दावत देता हूँ कि आप आए और आप ये डिबेट देखना, ये बहुत दिलचस्प डिबेट होगी, और इस पे बहुत जो है मैं समझता हूँ कि वहां पे दिलचस्प डिबेट होगी, क्योंकि ये एंगल किसी ने कभी उठाया नहीं है, या तो वो जिस तरह के मैं आपको बता रहा हूँ
1: सिकंदर
2: ये
1: एक और
2: दो।
1: बात भी कर लें कि जो लोग टाउन हॉल में आते हैं इनवैलिड पार्किंग के लिए, वो तो थोड़ी देर के लिए टाउन हॉल काम के लिए आते हैं, तो उनके लिए जो पार्किंग खाली पड़ी होती है उनको ये इजाज़त मिलनी चाहिए, चाहे जाए कि जो कम्यून में होते हैं उनको इजाज़त होती है।
2: नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, और इस तरह की बहुत सारी जो है ना छोटी छोटे रास्ते हैं पार्किंग को बेहतर करने के लिए, यानी कि गाद फैरी, ये नहीं है कि हमें ये भी नहीं, हमने क्लाइमेट का भी देखना है और हमने फ्यूचर का भी देखना है, ये नहीं कि पूरे शहर को आप एक पार्किंग ही पार्किंग करते, लेकिन जो एक जरूरत है उसके तहत तो यार करे ना। और इतनी महंगी आप लोगों ने यहाँ पार्किंग कर दी है कोपनहेगन कम्यून में, इसको जरा आप सस्ता करें। तो इस पे बहरहाल डिबेट होगी, ये हमने तलब किया है, और मैं अभी थोड़ी देर में प्रेस
1: सिकंदर ये
2: रिलीज
1: भी
2: जारी
1: जरा
2: करने
1: पता
2: जा रहा हूँ।
1: कीजिएगा, ये जो इलेक्ट्रिक की पार्किंग बाहर लगी होती है, जो उन्होंने वो डंडे खड़े किए होते हैं, ये तो पैसा कमाने वाले होते हैं या कम्यून के डंडे हैं सारे ये?
2: ये कम्यून के भी होते हैं, ये कम्यून के भी होते हैं, लेकिन देखे ना वो अक्सर खाली खड़े रहते हैं ना। अब रात को मिसाल के तौर पर आप डेस्कटॉप पे रह रहे हैं, रात को आप शाम को घर आए फैमिली के
1: वो
2: साथ
1: सारे खाली
2: कहीं से,
1: होते हैं।
2: हाँ, अब आपको पार्किंग नहीं मिलती, और आगे आपके आगे 10 पार्किंग इस तरह फ्री होती है, वो खाली पड़ी होती है। तो इसका मतलब ये कि कोई ना कोई ऐसी गलती है सिस्टम में जो ये पार्किंग जो है वो सही नहीं कर सके। और मैं ये समझता हूँ इसलिए है कि इन्होंने अपने अपने स्टैंड लिए हुए हैं, आइडियोलॉजिकल स्टैंड लिए हुए हैं, जहाँ लेफ्ट विंग पार्टी जो कहती है नहीं सारी पार्किंग खत्म करो, हर तरफ पार्क बनाओ, और जो राइट विंग है वो कहती है नहीं सारे पार्क खत्म करो, मतलब एक खौफ साग, और हर तरफ ही पार्किंग बनाओ। हम कहते हैं कि नहीं, जहां जिनको जरूरत है उनके लिए सहूलतें होनी चाहिए, और ये जिन लोगों ने फ्रिचस गाड़ियां रखी हुई हैं, ये जो अमीर लोग हैं कोपनहेगन में जिन्होंने फ्रिचस गाड़ियां रखी हुई, सबका नाटक बंद किया, इनके ऊपर आप सख्ती करो, इनके आप पैसे बढ़ाओ। ये भी आप कानून इजाजत नहीं देता, कोपनहेगन की जो सेल्स जो अलाउ है वो इजाजत नहीं देता। तो ये सारी चीजें मैं अब इनसे बात करूंगा और इनसे सवाल जवाब करूंगा, और इसको हम इसकी हम तय में जाएंगे, और इसको हम भरपूर जो है ना इसमें हम फोकस करेंगे। और मैं अभी कुछ ही देर में भी ये आपसे बात खत्म करके तो मैं अभी प्रेस रिलीज जारी करने लगा हूँ, जो कि आप अखबार में देखेंगे, जहां पे मैं ये कहूंगा कि मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो तो लेफ्ट विंग पार्टीज है जिन्होंने वर्किंग क्लास की रिप्रेजेंट नुमाइंदगी करनी थी, वो इनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे, इस वजह से ये कोपनहेगन के हालात पार्किंग के हवाले से खराब हो रहे हैं।
1: सिकंदर बाज देखा ना, चूहे होते हैं वो मट्टी को जो है खुरचते रहते हैं, खुरचते रहते हैं, तो सियासी तौर पर लोग आपको भी खुरचते रहते हैं।
2: हाँ जी, वो देखें वो चीज जो है वो चलती रहती है और चलती रहेगी, और यही बात होगी ना कि जिस दिन फिर लोगों ने ये करना छोड़ दिया तो समझे फिर आप रेलेवेंट ही नहीं है। तो تو یہ بھی ایک سیاست میں چیز یہ ساتھ چلتی رہتی ہے.
1: آخر میں آپ ڈینش میں کیا میسج دیں گے؟
2: دیکھیں میں یہ کہن سی تھے الے ای کیوبرہاؤس کمون ات دین اوتویکلنگ وی ہیو سیٹ دی سسٹم مانگ او دین ففائلڈ پارکنگز پولیٹک وی ہیو سیٹ دی سسٹم مانگ او دین ہارٹ دی نیگیٹو کنسیکوئنسز سیلی فار آرباٹر کلاس سیلی فار دیم دی ہار منسٹ سیلی فار پنشنیسٹن سیلی فار دیم ود ہینڈی کیپ. اور دی این اوتفورڈنگ فور دی یس سی ای کیوبرہاؤس کمون ات دی ہیر ٹو لائر تو ہارٹ نے ایتابلیرڈ وینسٹر فلوئے پون دین سائیڈ دا ideologisk set bare vil nedlægge alle parkeringer, fordi man taler ind i en bogdagsorden, man taler ind i en dagsorden i forhold til klima, fordi det er det, akademikeren vil have. På den anden side, så ser du, hvad hedder det, højrefløjen, som vil plaster hele byen til med parkeringspladser. Den sunde fornuft er simpelthen forsvundet i den her debat. Og det er der, vi i Frie Grønne siger, at vi vil indtage den position, der hedder, at dem, der har fritidsbilerne, og her taler jeg om de rige, velhavende akademikere, der har lejligheder på Indre Vesterbro, Indre Nørrebro, Indre Østerbro, med en kassecykel til 50.000, naturvin i glasene, og en fritidsbil, de bruger en gang om måneden for at komme på i sommerhus. Det er dem, der er udfordringen her. Det er ikke arbejderen, det er ikke Lonnie, som er socioassistent og kommer hjem efter en lang nattevagt. Det er ikke Mustafa, som er produktionsmedarbejder, som kommer hjem på skæve tidspunkter og døgnet ikke kan finde en parkering. Det er ikke dem, der skal belastes. Jeg mener, det er fritidsbilismen, der skal ud af byen, og det er nødvendighedsbilismen, som skal forblive, og det er dem, man skal arbejde for at få en retfærdig og ordentlig parkering. Jeg mener personligt, Frie Grønne mener personligt, at det er en forfejlet parkeringspolitik, som ikke har været retfærdig og haft negative konsekvenser for arbejderklassen. Og det er det, jeg har indkaldt vores teknik- og miljøborgmester, Line Barfod, som er chef for området, for at spørge hende om, hun mener, at parkeringen har haft utilsigtede konsekvenser, og hvad vi kan gøre for at rette op på den her mange års forfejlede parkeringspolitik. Tak for ordet.
1: Skandar, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا. سامعین ناظرین, یہ تھے ملک سکندر صدیق کے, جو کہ کوپن ہیگن کمیون کے بارے میں بتا رہے تھے. سامعین ناظرین, آپ کے مطالبات ہم اکثر جو ہے وہ لیڈران سے ملتے ہیں, جو کمیونٹی کے لوکل مسائل ہوتے ہیں ہم شیئر کرتے رہتے ہیں. پارکنگ کا مسئلہ ہے, جینون مسئلہ ہے, کوئی اس پر بولتا نہیں ہے. بڑی بڑی گاڑیاں شہر کے اندر ہوتی ہیں, اسپیڈ ان کی 20-30 تک رکھی ہوئی ہے, 40 تک میکسیمم رکھی ہوئی ہے, لیکن گاڑیوں کی اسپیڈ جو ہے وہ 250 تک ہوتی ہے, میٹر میں 200 تک ہوتی ہے. بڑی بڑی گاڑی ہیں, آپ جا کر دیکھ لیں. یہ جو کونوں میں, گھروں میں کونوں کے پاس پارک بنے ہوتے ہیں نا, سب سے زیادہ یہ بار بنے ہوتے ہیں, ان میں زیادہ لوگ آتے ہیں گاڑی پارک کر کے اور یہاں بیٹھ کے جو ہے, ظاہر ہے ان کا ایک ٹریڈیشن ہے, کلچر وائز جو ہے بیئر پینا, کولا پینا, سوڈا وٹ ڈانس کرنا. تو یہ ٹائم کی بھی پابندی نہیں کرتے, حالانکہ بلڈنگ کے ٹائم ہوتے ہیں 10 بجے کے بعد ہر چیز کو کلوز کر دیا جائے. یہ اندر سے باہر سے کرسیاں اٹھا کے کمروں میں اندر لے جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ گاڑیاں باہر کھڑی رہتی ہیں. جس طرح ملک سکندر صدیق ذکر کر رہے تھے, کوئی بندہ کام کر کے آتا ہے اس کے لیے پارکنگ نہیں ہوتی, کوئی انویلڈ ہوتا ہے اس کے لیے آتا ہے پارکنگ نہیں ہوتی. تو انویلڈ کی جو پارکنگ ایک ہوتی ہے, الیکٹرک کی گاڑیوں کی پارکنگ جو فری پڑی ہوتی ہے. تو سامعین ناظرین, خود بھی آپ اس پر نظر رکھا کریں, کمیون کے ممبران سے آپ خود بھی ڈسکس کیا کریں. سامعین ناظرین, ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں, ہمارا کام ہے انفارمیشن دینا.
3: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے, تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: बाने बान और दूसरों की जो फार्मसीज है वो इस पार्टी में इस मुल्क के अंदर जो है उनका मुस्तकबिल इतना अच्छा नहीं होगा। तो मैं उनको बहुत खुशी से मुबारकबाद देता हूँ, बहुत अच्छा उन्होंने फैसला किया है। एसएफ जो है वो इस वक्त श्रीलैंड के अंदर मजबूत तरीन पार्टी है और हो सकता है कि आगे से जाके ये यूलैंड के अंदर भी ये अपने कदम जमा लें और ये पार्टी जो है इनका मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। तो मैं अपने दिल से उनको मुबारकबाद देता हूँ। जी राजीव साहब,
1: शाह साहब आप चूंकि जमहूरी आदमी हैं, आप जमहूरियत की कदर करते हैं, तो मुजीब साहब को बात छुपाते नहीं हैं, पब्लिक के आदमी हैं चूंकि वो पब्लिक में बात करते हैं। तो शाह साहब आपने हुकूमत का जिक्र किया, तो हुकूमत मेरे ख्याल है अब इतने अरसे के बाद इनको दोबारा वजारतें मिलेंगी, कुछ नए लोग वजारतों में आ जाएंगे, लाल लूके साहब भी किसी बड़ी अच्छी पोस्टों पर भी जाएंगे, वजारत भी मिलेगी, तो मेरे ख्याल है अब इलेक्शन जो है वक्त पर ही होंगे, अब ये किसी किस्म का पंगा नहीं लेंगे, जो कुछ शरारतें करनी थी सियासी बातें कर रहा हूँ वो बातें अब तय हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता।
0: जी इन्होंने जो गेम प्ले की है कि जो जो बातें करते थे उनको इन्होंने बैठा दिया बकायदा पार्लियामेंट के स्पीकर नायब स्पीकर जो इनके तीन चार नायब स्पीकर होते हैं उनकी पोजीशनों पे उनको बैठा दिया। मसला ये है कि क्या ये पार्टी जो है ये तवज्जो देगी, क्या मेजर फेडरिकसन जो है वो ये साल पूरा एज ए वज़ीर-ए-आज़म बैठी रहेगी, या वो इससे पहले ये देखे कि मेरा मुस्तकबिल जो है वो ईयू के अंदर है, जहां पे इस वक्त यूके जो है इंग्लैंड जो छोड़ चुका था वो बड़ी तेजी के साथ वापस आने की पूरी तमन्ना नहीं बल्कि पूरी को वो कुछ उसके मसाइल हल भी हो गए हैं और कुछ वो परमानेंट मेंबरशिप लेने के लिए दोबारा उसने जो पर खिला रहे हैं तो उनकी जो शरायत है उसके ऊपर वो गामजान है, उसकी बातचीत हो रही है। तो हो सकता है कि एंड ऑफ दिस ईयर या नेक्स्ट ईयर जो है जिस तरह के हालात जा रहे हैं, जिस तरह के ग्रीनलैंड के हालात हैं इस वक्त, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि हमने पूरा ग्रीनलैंड ओवरटेक कर लिया, लेकिन हमारी गवर्नमेंट यह कह रही है कि उसने हाफ ऑफ ग्रीनलैंड को हमने उसको इजाजत दी है, लेकिन ये क्या मसले किस वक्त सामने आएंगे, कब मंजरे आम पे आएंगे, ये सियासी चालें कब खत्म होगी और किस तरीके से इसका असर क्या पड़ता है नई आने वाली गवर्नमेंट पे, ये गवर्नमेंट को देखना होगा। लेकिन जो हमारे लोग हैं, जो हम लोग हैं, मैं आगे अली की भी बात आपके रेडियो पे सुन रहा था, वजीद कुरैशी साहब की भी बातें सुन रहा था, तो बड़ी अच्छी इन्होंने कहा है और ये हम आपके रेडियो पे अमूमन आप मुझसे पूछते रहते हैं, तो मैं यंगस्टर्स को यही कहूंगा कि आप आगे आए, सिर्फ पुरानी बातें हम इसलिए करते हैं कि आपको ये बताएं कि अगर जो आईन के खिलाफ कानून बनते हैं वो अगर उसके ऊपर आप प्रोटेस्ट करते हैं, उसके ऊपर आप जाते हैं, तो वो आप आसानी के साथ उनको डिमोलिश करा सकते हैं, उनको वापस कर सकते हैं। ये हमारे आईन की खूबी है, क्योंकि डनमार्क का आईन जो है ये रिटर्न आईन है, इसके ऊपर बेशुमार मसाले हैं, बेशुमार ऐसे लॉ फौसले थी जो पेश की गई थी पार्लियामेंट में, जिनको खत्म कर दिया गया वक्त से पहले और जो लागू हुई उनको भी खत्म कर दिया गया। यानी कि आप सबसे पहले ये देखें कि जो हमारे सियासतदान ये कहते हैं कि जी कानून खत्म नहीं होते, देखिए यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ के जो हाईएस्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जिसको हम कहते हैं, उसने उबर को बैन किया था कि ये हमारे मुल्क में नहीं आ सकती और हमारा जो कल्चरल हमारी जो कल्चर की अपनी टैक्सीज है जो हम हमारी अरसा दराज से 100 साल के करीब इस मुल्क के अंदर चल रही है वही चलेंगी, वही कानून हम रखेंगे, उसको हम थोड़ा सा मॉडराइट कर सकते हैं लेकिन हम उसी को लेके चलेंगे। लेकिन हुआ क्या कि एक जिस दिन ये अदालत से ये फैसला आया उसके दूसरे दिन ही उबर का जो डायरेक्टर था उसको मिनिस्ट्री में, ट्रैफिक मिनिस्ट्री में उसको जॉब मिल गई और वो डायरेक्टर बन गया। और उसके बाद उसने क्या किया कि वही उबर का कानून, बिल्कुल वही तौर तरीका, वही चीज लगाई और फिर अखबारों में आना शुरू हो गया। और ये रिटर्न चीज है मीडिया के अंदर कि उबर ने कहा कि हम 2030 से पहले पहले इस मुल्क में दोबारा कदम जमा लेंगे। तो उसके साथ ड्राइवर एज ए यहाँ पे जो कंपनी है वो

0: चलती रही, फिर दूसरी चीजें जो है उबर की तरह चलती रही, और वो उबर का कानून ऐसा आया कि हमारे लोगों को मौका मिला कि हम लोग जाके इसके ऊपर प्रोटेस्ट करें, जब हमें प्रोटेस्ट का राइट था राजा साहब, उस वक्त हमने प्रोटेस्ट नहीं किया। तो फिर अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने उबर उबर का राज का ना काबू का कानून लागू कर दिया। इससे यह है कि आप एक किस्म के वो जैसे AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी तरह आप एक आर्टिफिशियल वॉरमैन की हैसियत से वॉरमैन ही कर रहे हैं। आप असल में वॉरमैन नहीं, आपको जब भी आपका सेंट्रल चाहे आपको खत्म कर सकता है, आपकी वॉरमैन ही खत्म कर सकता है। आप अनपढ़ है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा 20-25 हजार करोड़ है तो आप यहाँ डरमा के अंदर बड़ा इजीली, आपको ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि आपको 3 साल यहाँ रहते हो गए या 4 साल, सिर्फ आपको एक एड्रेस एक हफ्ता भी पुराना हो तो आप यहाँ पे फर्म खोल के अपनी टैक्सी सर्च के बना सकते हैं। और ये कानून जो है ये एक मजाक है, इसके ऊपर हमने बार-बार बात की और लोगों ने समझा कि हम लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये हम यंगस्टर को समझाना चाहते थे। हम आज भी लोगों को ये कहना चाहते हैं, आज भी लोगों को बताना चाहते हैं कि देखें डेनिश लोग जो है ये राशिस्ट नहीं है, हम खुद राशिस्ट है, क्योंकि हम किसी की बात को सुनना पसंद नहीं करते, हम खुद अपने आप को दूसरों से अफसल समझते हैं, हम ये समझते हैं कि हम हमारे से अच्छा बंदा कोई नहीं, और यही गलतफहमी है जिसकी वजह से इंटरग्रेशन के अंदर जो है वो जो है वो रखना पड़ा। इंटरग्रेशन के 4 पिलर होते हैं। पहला पिलर जो होता है वो होता है कि आपको जस्टिस मिलनी चाहिए, उसका फकदान है इस मुल्क के अंदर। दूसरी चीज है कम्युनिकेशन, और ये दोनों पहले जो पिलर्स हैं ये इसके ऊपर हमारी गिरफ्त नहीं है। हम लोगों से कम्युनिकेशन नहीं करते, हम लोगों से इंफॉर्मेशन नहीं लेते, हम लोगों के साथ जाके बात नहीं करते। कल आपने देखा कि कितना अच्छा मेला था यहाँ एल्बर्सोंग के अंदर, बहुत सारे एम्बेसडर्स आए, 16-17 एम्बेसडर्स यहाँ पे आए, उनके पूरी टीमें आई, आपने उनसे बातें की, हम सब वहां पे मौजूद थे, उन्होंने बकायदा मेहंदी हाथों पे लगवाई, बहुत कुछ उन्होंने किया। और ये और डेनिश जो पुराना बॉम्बिस्टर था एल्बर्सोंग का, वो भी सीन, और उसके अलावा जो इस वक्त के जो कंजर्वेटिव का है उसने भी ये तासार दिए, उसने कहा कि इस तरह की यहाँ पे होने चाहिए, बहुत ज्यादा होने चाहिए, और यहाँ पे हमारी कम्युनिटी को, यानी उसका मकसद ये था कि डेनिश कम्युनिटी को भी इन्वाइट होना चाहिए, वो भी आए। और ये मैं आपको बता दूं, मुझे ये याद नहीं कि आज या कल एल्बर्सोंग के अंदर या नेक्स्ट वीक, मेरा ख्याल में ये नेक्स्ट वीक है, अगर अदनान इसको या कोई और सुन रहा तो वो इसको करेक्ट करेगा, एक फूड फेस्टिवल चल रहा है इसके अंदर एल्बर्सोंग सेंटर के अंदर, और वहां पे मुख्तलिफ किस्म के फूड स्टॉल वगैरह चलेंगे। ये तो ये बड़ी अच्छी चीज है, हमारे लोगों को भी चाहिए कि सस्ता खाना बनाकर लाए, सस्ती चीजें लगाए, ताकि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा हमारे कल्चर को पसंद करें। कोशिश ये करें कि अपने कल्चर के जो कपड़े हैं वो उसको बनाएं। और राजा साहब मैं इसमें बहुत हुआ हूं, और मुझे काफी लोगों ने ये कहा है कि यहाँ पे एक जो डेनिश का और पाकिस्तान कल्चर सोसाइटी बड़ी होनी चाहिए, पूरे मुल्क के अंदर जो ये चीज राज करे, तो मेरा ख्याल में कि
1: शाह साहब
0: वो
1: आपकी बातें दुरुस्त हैं, चूंकि आप जमहूरी बंदे हैं ना, जमहूरी बातें करते हैं। शाह साहब सबसे पहले जो है ना इत्तेफाक होना चाहिए, यहाँ जब पर्सनैलिटी क्लैश शुरू हो जाते हैं, बंदा एक दूसरे को मानता नहीं है, बंदा अपनी अपनी हदों में रहना चाहता है, अपनी सरहदों के सियासी सरहदों के अंदर रहना चाहता है, तो शाह साहब फिर इत्तेफाक नहीं होता। जिस तरह आप देखें ना, आप बात करते हैं PDM की, आज हुकूमत ने आपस में इत्तेफाक कर लिया तब वजारतें मिलेंगी ना, जब तक आपस में ये सब लोग इत्तेफाक नहीं करते तब तक काम चलता नहीं। आप देखें कभी शाह साहब आपने देखी है डेमोंस्ट्रेशन के गैर मुल्की अपने हकूक के लिए बाहर निकले हों?
0: इन्होंने इनको पता ही नहीं, इनको इनको इनके पास इतना टाइम नहीं है, और अगर ये निकलते हैं तो ये डेमोंस्ट्रेशन करते हैं। मुझे इसमें दो राय नहीं है, मेरी हमदर्दी है, बल्कि मेरा दिल दुखता है जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, जो कुछ गजा में हो रहा है, जो कुछ दूसरे मुसलमान ममालकों में या दुनिया के दूसरे ममालकों में जो जहाँ जंगे लड़ी जा रही है, इंसानियत का कत्ल जो है, ये मुझे मुझे दुख देता है, बहुत ज्यादा दुख देता है। लेकिन मसला यह है कि क्या आज तक कोई ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन हुई है कि जिसके अंदर हमने ये कोशिश की हो कि हमें इंटरग्रेशंस के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका हल क्या है, या हम लोगों ने खुद कोई ऐसी मीटिंग्स कॉल की है कि हम उसके ऊपर बैठ के कोरोना की बात सुनी जाए। हमारे लोगों की, आज भी एक बच्चा मुझसे बात कर रहा था, वो पूछ रहा था, तो मैंने उसको कहा बेटा देखो जब हम जाते हैं इकट्ठे होते हैं तो वहां ऐसे लोगों को स्टेज पे बैठा दिया जाता है जिनको अपनी हिस्ट्री का नहीं पता, तो वो क्या हिस्ट्री किसी को बताएंगे, वो क्या बताएंगे कि यहाँ क्या, क्योंकि जब आपको, जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री लैंड, जिस कंट्री मुल्क के अंदर आप रह रहे हैं उसका आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ेंगे, उसको जहन शीन नहीं करेंगे, उसके अलावा फिर उनके जो वक्ती जो कानून बने हुए हैं उनके उनके आपको ना पता हो, और एक के आपको डिफरेंट कल्चर, जैसे हमारे डिफरेंट कल्चर्स हैं इनके भी डिफरेंट कल्चर्स हैं, उन कल्चर के लोगों के साथ आपकी मुलाकात होनी चाहिए, उन लोगों से आपको बात करनी चाहिए। अब कल आपने कितना मसरूफ दिन गुजारा है, आपका बेटा आपके साथ था, वो कैमरा लेके हर जगह लोगों से बात कर रहा था, मुख्तलिफ एम्बेसडर से बात कर रहे थे, आप ही कर रहे थे, आपने पहले मेयर जो थे यहाँ के सोशल डेमोक्रेट के सीन उससे भी तफसीलन बात की, दूसरों से भी बात की, तो ये चीज होती है जो बंदे को इन्फॉर्म करते हैं और जो वक्त के ऊपर लोगों को बात करते हैं। लेकिन अगर हम लेग पुलिंग पे लगे रहे कि भाई फलाना को और ये देखो इससे फलाने एम्बेसडर के साथ खड़ा हो गया है और ये उससे पता नहीं क्या बात कर रहा है, मैं इसके साथ बात करना चाहता हूँ ये रास्ता दे, तो ये चीजें, ये लेग पुलिंग नहीं होनी चाहिए, और ये बिल्कुल आप अपना बात सही करते हैं कि यहाँ पे इस रेडियो की, इस आपकी आवाज के जरिए हमने लोगों में ये उजागर किया कि ये जो हमारे अपने गांव की बिरादरी सिस्टम से हमने लोगों को निकाला, लेकिन अब हमें इन बिरादरी सिस्टम से निकले हुए बच्चों का को ये भी शौर देना है कि ठीक है आप एजुकेटेड हैं, आप बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम मानते हैं, लेकिन सियासत जो है दो तरह की होती है, एक होती है सियासत जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं, एक होता है कि आप लॉ को जानते हैं, लॉ को जो जानता है वो होता है पार्लियामेंटेरियन, वो लॉ मेकर्स होते हैं, वो कानून को बेहतर तरीके से समझते हैं, उनको पता होता है कि कानून के अंदर किस तरह हेरा फेरी की जा सकती है, किस तरह इसको स्टॉप किया जा सकता है, किस तरीके से ये गैर कानूनी चीजें जो है जजों के अदालतों के जो फैसले आए हैं उनके खिलाफ ये काम कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये इंसानियत के खिलाफ जो इन्होंने किए हैं। तो हमारे हमारे हमें सिर्फ ये नहीं चाहिए कि हमें यहाँ पे राजा गफूर साहब जो अक्सर बात करते हैं ये अप्लाई एम हो, ये फलानी चीज हो, ये फलानी चीज हो, भाई हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमें ज़हनी सुकून होना चाहिए, हमें रूहानी सुकून होना चाहिए, हमें एहसास होना चाहिए जैसे हम 70s 80s में 90s में थे इस मुल्क के अंदर, हमें बाहर निकलते हुए खौफ नहीं आना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। आप यकीन कीजिए कि सबसे ज्यादा अगर कोई इस वक्त बदतमीजी करते हैं, ये डेनिस तो करते हैं, ये तो उनका मुल्क है, लेकिन हम लोग उनसे 10 रती आगे, हम लोग, मेरी मेरे 2 या 3 हफ्ते पहले एक बंदे से बात हो रही थी और उससे ये बात हो रही थी कि उसको बैंक जो था वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए उसका अकाउंट भी खोल रहा था, तो वो बड़ा गुस्से में था, तो मैंने उसको कहा कि भाई तुम पहले अपने घर जाओ, उनसे जाके पूछो कि भाई तुम्हारे घर वालों ने क्या किया, या मुझसे पूछो कि हमने क्या किया, हमने लोन लेके हम लोगों ने अपने बिजनेसों को बैंक करप्ट किया, हमने पैसे वापस नहीं किए, तो बैंकों ने हम पे इतबार कैसे करना है। अब क्योंकि मसले इतने बढ़ गए हैं और बैंक चाहते हैं कि भाई अगर आप 1-2 लाख का तो कर रहे हैं फ्रॉड तो कोई बात नहीं, अगर आप टैक्स में और मंथ में ही मिलियन का फ्रॉड कर रहे हैं तो फिर आपने बैंकों के साथ कितना लोन और कितने फ्रॉड किए। तो इसलिए ये गवर्नमेंट ने इन लोगों को इजाजत दे दिया कि आप जिसको चाहे रखें, अभी भी अच्छे बैंक हैं, अभी भी अच्छे लोग हैं, अभी भी बैंकर्स अच्छे हैं जो आपको जाती तौर पर जानते हैं और वो आपकी पोजीशन को देख लेते हैं कि भाई ये बंदा कैसा, तो अभी भी वो आपके गुफ्तगू से, आपके कारोबार से मुतासर होकर आपको बैंक कौन खोलने की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो काउंसलर हजरात हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं, वो बजाय छुट्टियों पे घूमने फिरने के, उनको ये चाहिए कि कुछ दिन अपनी उस अवाम को भी दे जिस अवाम ने उनको वोट दिया। तो ये चीजें जो हैं, हमारे यंगस्टर्स को सोचना चाहिए कि हमें आजादी किस तरीके से हासिल होगी। आजादी खून बहा से नहीं होती, आजादी जो है आप अपनी अकल से लेते हैं, और अकल इस्तेमाल करने के लिए हमारे यंगस्टर जो हैं आज के जमाने में बहुत शौर रखते हैं। सिर्फ ये है कि इस शौर के साथ उनको ताकत मुहैया की जाए, उनके पीछे लोग हों। यानी कि जैसे कि अभी मेरे भाई, छोटे भाई एसएफ में जा रहे हैं, इनके साथ अगर 50-60-100 बंदा जो है उनकी गैदरिंग हो और वो एसएफ वालों को पता लगे कि ये बंदा सिर्फ अकेला नहीं आ रहा है, इसके साथ कितने बंदे आ रहे हैं, तो वो एक पावरफुल बंदे की हैसियत से उसमें शामिल होगा।
1: क्या शाह साहब ये सारी पार्टियां उसी तरह की बातचीत करने की आजादी देते हैं, फिर कहते हैं फलां को निकाल दिया, फलां ने ये बात नहीं मानी थी, फलां ने निकाल दिया, जिस तरह मौल जुकेटफ की पार्टी में ईसाई में किसी बंदे ने कोई बात की थी तो उसे पार्टी से फारग कर दिया। तो शाह साहब क्या ये लोग सारी चीजें सोच कर जाते हैं?
0: देखिए, जब आप किसी पार्टी के मेंबर बनते हैं तो वहां पे आपको जो पार्टी का मंशूर है वो बताया नहीं जाता कि हमारी पार्टी का ये मंशूर है, हम इस पे सख्ती से हम इस पे अमल दरामद करते हैं, आप ये करेंगे। मैं अगर चाहूं तो मैं अंसा का भी मेंबर बन जाऊं, डेंथ फुलके पार्टी का बन जाऊं। हाँ, डेंथ फुलके पार्टी मुझे ये कहेगी कि तुम है ही मुसलमान, तुम मेरी पार्टी में कैसे आ सकते हो, वो ये उतराज उठाएंगे। लेकिन मैं अगर उसको कहूँ कि नहीं नहीं मैं मेरे ख्याल आपसे मिलते हैं तो मैं बड़ा बुरा हूं, तो वो कहेंगे ठीक है अब तुम हमारी तरह के आ जाओ। तो असल मसला ये है कि आपने जब किसी पार्टी को ज्वाइन करना है तो उसका पहले आप देखें। अभी मैंने ये जो बात की थी पहले स्टार्ट में सियासत में कि ये जो एसएफ है, जो अपना इनिजलिस्टन है, अल्टरनेटिव है, रेडिकल फ्रंसा है, इन्होंने किस बात पे वोट लिए थे? इन्होंने वोट लिए थे फलस्तीन के साथ खड़े होने के लिए। इन्होंने वोट लिए थे जो यहाँ के मुसलमानों पे और फॉरनर्स के ऊपर जो जुल्म हो रहा है यहाँ डेनमार्क के अंदर, उनके लिए इन्होंने आवाज कर उठाई, और इनको सबसे ज्यादा वोट जो है वो कोपेनहेगन और वेस्टाइन और दूसरे इलाकों से इनको वोट मिले, और ये सामने आया। और इनको इन्होंने किसकी मुखालफत की? इन्होंने पीडीएम की गवर्नमेंट की मुखालफत की, इन्होंने सोशल डेमोक्रेट की मुखालफत की, इन्होंने कोपेनहेगन से सोशल डेमोक्रेट को बाहर निकाला, उनकी मेयरशिप जो है वो छीन ली। तो अब क्या उसी पार्टी के साथ ये दोबारा खड़े हो गए? अब होगा क्या, होगा क्या, किस तरीके से इन्होंने किया? क्या ये हमारी आवाजों को जो है उनसे बात करना चाहेंगे? नहीं, ये सिर्फ वो बात करेंगे जो इनके अपने पूरे मुल्क के लिए अच्छी है। ये बात करेंगे कि हमारे डांसों को जो है, हम भी डांस हम याद रहते हैं, हमें मेडिकल कैसे मिले, हमें फलानी चीज स्कूलों में फलानी चीज, ये चार पांच चीजें मंजूर करके तो ये इनके साथ ज्वाइन करके बैठ जाएंगे। ये कभी ये नहीं कहेंगे कि भाई आप लोगों ने वो महकमा जो है अपना उलिंग का ये डेस्ट्रिक्ट में ले गए और पूरे मुल्क में दूसरों को ये सहूलत दिया, तो कोपेनहेगन और वेस्टर्न के लोगों को आप क्यों नहीं ये सहूलत दे रहे? आप इसको वापस लाए या इनकी पावर सर्विस के साथ इनको चिल्ड कर दिए जाए, इनको सामना, ये बातें नहीं करेंगे। ये वो बातें करेंगे जो इनके अपने मफाद के लिए है और जिसके लिए इन्होंने हाँ की है। तो हमारे लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि क्या इसके अंदर हम इनके मेंबर बनकर इनकी सोच को मद्दम कर सकते हैं, इनकी फौज को वापस ला सकते हैं, जब इनको पता लगे कि इनको बताया जाए कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, हमारे आने वाली नस्लों की प्रॉब्लम्स क्या है, हम किस तरीके से क्राइम को रोक सकते हैं, हम किस तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेट हो सकते हैं, जैसे कि 70s और 80s और 90s में हमारे साथ होता था, यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट किया जाता था, लोगों की सुनी जाती थी, लोगों के साथ कम्युनिकेशन किया जाता था, कम्यून इतनी पावरफुल होती थी कि वहां का जो एक साइज में हैंडल होता था वो एक किस्म का बॉम्बिस्टर होता था, वो जो फैसला कर देती थी या कर देता था उसके ऊपर बहुत कम चीज होती थी और बड़े ईमानदारी से वो आपकी बात सुनते थे। लेकिन अब आपको पता ही नहीं है, आपके ऊपर जो सियासतदान बैठे हुए हैं उनको नहीं पता कि नीचे क्या हो रहा है। हमने इतनी आवाज उठाई, बल्कि ये इंटरनेशनल अपना पूरे नेशनल लेवल पे डायलॉग में गई कि भाई यहाँ पे पीने का पानी साफ नहीं होता, पानी पीने का पानी सबसे गंदा तरीन है, जहरीला पानी है। इन्होंने इलेक्शन में पानी को लेकर चले और कहा कि ये 35% गंदा तरीन पानी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये 35 नहीं, ये 70% गंदा पानी है और प्रूफ कर सकते हैं, हर जगह से प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन क्या हमारे काउंसलर्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि कैंसर फैल रहा है, ज्यादातर पैसे लग रहे हैं, इंसान को सेहत के लिए क्या चीज करनी चाहिए। आप पार्कों में चले जाए, उन लोगों कानून बना हुआ है कि कुत्ते को जो है अगर वो कहीं पे वो कुत्ता पार्टी करता है तो उसको आप उठाए, उसको ले जाकर अपना स्कार्फ पहन में जहाँ गंदगी फेंकने की कोई डब्बा आपको मिलता है उसके अंदर फेंके। लेकिन यह क्या कर रहे हैं, आप जाए स्टंट पे चले जाए वहां पे भी आपको कुत्तों की पार्टी मिलेगी हर जगह। तो कानून जो है ये इसका मजाक जो है ये हमारे अपने बनाए हुए लोगों ने किया है। हम तो अपनी जुबान वाले लोगों को कह सकते हैं ना कि हमने आपको वोट दिया, सिर्फ इससे ये वोट दिया कि आप पाकिस्तानी है, लेकिन काश के हमने डेंचो को वोट दिया होता और डेंचो के साथ बैठ के उनको अपनी प्रॉब्लम बताई होती तो वो हमें बेहतर तरीके से हमारे मसाइल को जो है वो सुलझा सकते थे। जी राजेश साहब,
1: शाह साहब आप सारी बातें डेनमार्क की जमहूरियत की कर रहे हैं, तो शाह साहब जिनके लिए आप फाइट करना चाहते हैं वो खुद जमहूरियत पसंद ही नहीं है।
0: यही अल्लाह के फजल से बच्चे जो है ये सारे जमहूरियत पसंद है, जितनी यंग जनरेशन है फर्स्ट और सेकंड जनरेशन है ये सारी जमहूरियत पसंद है। जो फर्स्ट जनरेशन जिसमें हम लोग आए हैं हमें अख्तिलाफ राय है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना कि चंद एक लोगों में अख्तिलाफ पाया जाता है। लेकिन असल मसला यही है कि क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारी कल आप देख रहे हैं मेला के अंदर, आज भी मेला लगा हुआ है ट्रांसफॉर्म में, जहां जहां पे भी मेला होगा आप देखेंगे कि हमारी खवातीन की तादाद बहुत ज्यादा है। तो फिर उन्होंने ये सारा एक मीटिंग बनाई और इसके अंदर ये फैसला किया कि बजाय हम लोग अपने पास से या इस चीज को खत्म करें, हम जो यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं उनसे एक मामूली सी फीस जो है वो ले लें और उसको अब ये नहीं हम कर सकते कि हम लोगों को कहें जी कि ये आप 10 मीटर की जगह ले लें।
2: आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
3: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
4: सामईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।